0: और व्यवहार को समझने का अवसर देता है। जब हम ईमानदारी से स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, तभी हम अपनी गलतियों को सुधार कर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या आज मैं कल से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ?
1: ये था अनमोल विचार और अब श्रोताओं आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना, आगाज मातृ वंदना के साथ।

श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं ज्योति कारे के स्वर में मीराबाई की लिखी रचना।

अभी आप पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में संत कबीरदास की लिखी रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत है सोनाली जलोटा की आवाज़ में ये भजन।

0: राजेश मिश्रा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें ऐसे विषाणु और जीवाणु के संदर्भ में जो कि जैविक कीटनाशियों के रूप में हमारी मदद करते हैं और ये पर्यावरण के भी दोस्त होते हैं। जी हाँ, प्रकृति में ऐसे जीवाणु और विषाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कि पौध सुरक्षा में हमारी मदद करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस यानी जिसे हम NPV वायरस कहते हैं। ये मुख्यतः चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली का जैविक कीटनाशक है। ये तरल रूप में होता है और इसमें वायरस के कण होते हैं जिससे कि छिड़काव के 2 से 4 दिन बाद ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसके प्रभाव से सुंडी सफ़ेद या गुलाबी पड़ जाते हैं और इनके मुख से पीले भूरे रंग के पदार्थ श्रावित होने लगते हैं। इस वायरस के प्रभाव से जो कीड़ों के सुंडी होते हैं उनके भीतरी भाग सड़ जाते हैं

0: स्वरूप वे मर जाते हैं। इनके प्रभाव से मरी हुई सुंडी पौधों की शाखाओं से उल्टे लटके हुए नजर आते हैं। इसकी 250 से 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 12 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने से फसलों को काफ़ी लाभ होता है। किसान भाइयों, ध्यान रखना चाहिए कि एनपीवी का छिड़काव सायंकाल में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की परावैगनी किरणों के प्रभाव से ये जो विषाणु होते हैं उनके नष्ट होने का डर रहता है। इनका प्रयोग चना, अरहर, फूलगोभी, टमाटर, मिर्च आदि में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इसके प्रभाव से खेतों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखी गई है और यहाँ तक कि 90% जो सुंडियाँ होती है उनका सफाया हो जाता है। इस वायरस का जीवन काल जो होता है वो 6 महीने का होता है। एनपीवी की तरह अन्य विषाणु जनित कीटनाशक भी हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जिसे सीपीवी कहते हैं, ग्रेनुलोसिस वायरस, इनका प्रयोग भी इसी तरह से करते हैं और प्रभाव भी लगभग समान ही होता है। एनपीवी वायरस के बाद एक ऐसा जीवाणु जो कि हमारी मदद करता है कीड़ों से बचने में, इसे बैसिलस थुरिंजेंसिस कहते हैं, आमतौर पर बीटी के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः लेपिडोप्टोरा कुल की जो सुंडियाँ होती हैं उनको नष्ट करते हैं। बीटी कीड़ों के शरीर में विषैला प्रोटीन स्रावित करते हैं, जिसके प्रभाव से जो कीड़ों की सुंडियाँ होती हैं उनको लकवा मार जाता है, उनके आंत फट जाते हैं और संक्रमण से जो कीड़े होते हैं वो 2-3 दिन में मर जाते हैं। बीटी तरल और पाउडर दोनों रूप में उपलब्ध होता है। बीटी की 500 से 1000 ग्राम मात्रा 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करने से काफ़ी फायदा होता है। इसका प्रयोग फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी आदि में किया जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, कुछ एक जीवाणु और विषाणु यानी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पौध सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। ये हमारे जो शत्रु कीट होते हैं उन पर निशाना साधते हैं और उनका नियंत्रण प्राकृतिक रूप से करते हैं। इस प्रकार से ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान होता है और ना ही हमारे स्वास्थ्य पर।
1: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा विश्व अल्जाइमर दिवस, तथा विशेषज्ञ होंगी सीनियर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर मितुल शाह। श्रोता इन नंबरों पर कॉल करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। फोन नंबर है 2325 58 और 2325 40, तथा हमारा एसटीडी कोड है 03192। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

7:10 का समय होगा गोल्ड सुप्रभात का। और गोल्ड सुप्रभात को लेकर आपके साथ रहेंगी सुनीता चौहान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 24 सितंबर दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 20 सितंबर को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस जलयान के इन्हीं स्थानों के लिए आगामी यात्राएं 24, 25 और 27 सितंबर को श्री विजयपुरम से होंगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान व कार्निकोबार की यात्रा पर कल 20 सितंबर को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 21 सितंबर को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरेसा कचाल व नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर 24 सितंबर को श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी 27 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नानकौरी व कैंबल बे के लिए नालंदा जहाज 22 सितंबर को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जहाज की वापसी 24 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये जहाज अपनी अगली यात्रा पर इन्हीं स्थानों के लिए 29 सितंबर को श्री विजयपुरम से रवाना होगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। इस जलयान की वापसी 20 सितंबर सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप के लिए और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी चंगा के स्थान पर अब एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। जलयान आज ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल रविवार 20 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप के लिए एमवी जॉली बॉय कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 21 सितंबर को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं, आज का हमारा शीर्षक है मस्ती। श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है, अगर रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से थोड़ा ब्रेक लेकर एक दिन खुलकर मस्ती की जाए और बात भी थोड़ी अलग अंदाज में की जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ श्रोताओं, आज है 19 सितंबर और आज ही के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे, यानी समुद्री डाकुओं की तरह

बोलने का दिन। लेकिन ठहरिए, इस दिन की कहानी किसी पुराने समुद्री जहाज या खजाने की तलाश से नहीं, बल्कि दो दोस्तों की एक मजेदार शरारत से शुरू हुई थी। कहानी शुरू होती है साल 1995 से, अमेरिका के ओरेगन में। दो दोस्त जॉन बॉर और मार्क समर्स रैकेट बॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान एक दोस्त को चोट लगी और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा अर्र। बस इसी एक आवाज ने दोनों दोस्तों को एक आइडिया दे दिया, क्यों ना साल में एक दिन ऐसा हो जब लोग समुद्री डाकुओं की तरह बोलें, अजीबोगरीब अंदाज अपनाएं और थोड़ी मस्ती करें। और इसी मस्ती से जन्म हुआ एक अनोखे दिन का। तो चलिए इसी मस्ती से भरे माहौल की शुरुआत करते हैं।

तो मस्ती का सिलसिला जारी है दोस्तों। अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। सवाल था, आखिर इस दिन के लिए तारीख चुनी गई तो 19 सितंबर ही क्यों? दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन दोनों दोस्तों के बीच वो मजेदार घटना हुई वो था 6 जून। लेकिन 6 जून पहले से ही एक ऐतिहासिक और गंभीर तारीख के रूप में जाना जाता है, इसलिए दोनों ने एक ऐसी तारीख चुनी जिसे आसानी से याद रखा जा सके, और 19 सितंबर चुन ली गई जो मार्क समर्स की पूर्व पत्नी का जन्मदिन था। अब सोचिए, एक छोटी सी दोस्ताना मस्ती, एक अचानक निकला अर्र और एक ऐसी तारीख जिसे आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग मजेदार अंदाज में मनाते हैं। शुरुआत में ये बस दो दोस्तों का मजाक था, लेकिन साल 2002 में मशहूर हास्य लेखक डेव बेरी ने इसके बारे में लिखा, और फिर ये मजेदार आइडिया अमेरिका से निकलकर दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच गया। और जब बात मस्ती की हो तो अगला गाना भी मस्ती से कम कैसे हो सकता है।

दोस्तों अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और किसी ने हेलो या गुड मॉर्निंग की बजाय आपसे कहा हो अहोए, ओहो हो, आपने पूछा कैसे हैं, सामने से जवाब आया अर्र, और अब कोई कंधे पर नकली तोता बैठा कर घूमता दिखाई दे तो बिल्कुल मत चौंकिए, हो सकता है वो भी आज के दिन की मस्ती में शामिल हो। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे पर लोग असली समुद्री लुटेरों का समर्थन नहीं करते, ये तो फिल्मों और कहानियों में दिखने वाले समुद्री डाकुओं के मज़ेदार अंदाज की नकल करने का बहाना है। कहीं लोग समुद्री डाकुओं जैसी पोशाक पहनते हैं, कहीं आंख पर नकली पट्टी लगाते हैं, तो कहीं बातचीत में अर और यहो हो जैसे शब्द जोड़कर दिन को मज़ेदार बनाते हैं। तो अगर आज कोई आपको एक अलग अंदाज में बोलता हुआ मिले, बस मुस्कुराइए और सोचिए शायद वो भी इस अनोखे दिन की मस्ती में शामिल है। और अब इस मस्ती को थोड़ा और आगे बढ़ाते

0: तो देखा आपने, एक छोटी सी शरारत, एक दोस्ताना मजाक और एक अर्र की आवाज ने कैसे एक अनोखे दिन को जन्म दे दिया। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप मस्ती शीर्षक पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री विद्या। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रामचरितमानस गान की 366वीं कड़ी।

श्री राम के राज्यकाल में अयोध्या की सुख संपदा तथा प्राकृतिक छटा को मात्र अनुपम की संज्ञा दे देना पर्याप्त नहीं है। पक्षीराज गरुड़ को राम नाम की महिमा सुनाते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जब से अवधपुरी में राजा रामचंद्र के प्रताप का सूर्य उदित हुआ है, तीनों लोकों से अज्ञान के अंधकार का नाश हो गया है। मद, मान, मोह और ईर्ष्या का लोप और सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक का उदय, ये है रामराज्य की विशेषता, जिसका आकर्षण सनकादि मुनि तक को

श्रोताओं, अभी आप अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में रामचरितमानस गान की 366वीं कड़ी सुन रही थी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के तहत चंद देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत चंद देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं।

मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों के कई भागों में वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों में आज और कल एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को 22 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7 बजे जनसूचनाएं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। सवेरे 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी। वहीं इसी समय 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरी गीत। सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और 100.9 MHz पर प्रसारित किया जाएगा हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा विश्व अल्जाइमर दिवस तथा विशेषज्ञ होंगी सीनियर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर मितुल शाह। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे रेणु विजय चौधरी और ताहिरा सैयद। सवेरे 9 बजे और 9:45 पर आपके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सवेरे 9:10 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 10 बजे आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। गीत गुंजन कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर गीत अतीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम

के तहत दोपहर 12:30 पर आप झलकी सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में मोहम्मद रफी को आप सुन पाएंगे। फरमाशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा। यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा लोकप्रिय गीत सुनवाए जाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का प्रसारण समय रहेगा 4:30। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बाहरों की शाम कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए 4:45 पर। 5:00 तमिल कार्यक्रम में युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा। बांग्ला कार्यक्रम के अंतर्गत 5:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में सिप्पी घाट निवासी श्रीमती गीता देवी से बातचीत की जाएगी। विषय रहेगा मुर्गी पालन, छोटा कारोबार, बड़ी उम्मीद। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। 6:45 पर लेखक मृणाल पांडे की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी। खेल 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा, ऐसा भी होता है। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार, उसके उपरांत गौरव गान सुनवाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:30 पर राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती तथा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में 10:00 एस हरि कुमार का कर्नाटक शैली में गायन सुनवाया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तथा इसी बीच 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हिंदी और अंग्रेजी में अब आप सुनेंगे समाचार, और समाचार के बाद मैं सुनीता एक बार फिर होंगी आपके साथ लेकर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात, और समय रहेगा 7:10। तो फिलहाल जानते हैं देश दुनिया का हाल और सुनते हैं समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य 20 तम

विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजीपुरम और इसके आसपास के इलाकों में 57.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:18। एयर इंडिया से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। यही विमान श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी सूचना सुन रहे थे। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा विश्व अल्जाइमर दिवस तथा विशेषज्ञ होंगे डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर मितुल शाह। श्रोता इन नंबरों पे कॉल करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। फोन नंबर है 2325558 तथा हमारा एसटीडी कोड है 03192। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हिंदी पखवाड़ा के तहत कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8वां संस्करण नवंबर दिसंबर माह में तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा और द्वीप समूह में अगले 5 दिनों तक एक या दो स्थानों

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण एवं जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने लोक निवास में प्रशासन के मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती, पुलिस महानिदेशक रविन्द्र सिंह यादव, उपराज्यपाल की सचिव ज्योति कुमारी और अन्य अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों और उनके परिणामों पर चर्चा और विचार विमर्श किया। हिंदी पखवाड़ा के तहत प्रशासन तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी के प्रचार प्रसार में युवाओं की भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोजित होगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र अटल महासागर विज्ञान एवं द्वीप प्रौद्योगिकी केंद्र ने हाल ही में डिगलीपुर के रामनगर, माया बंदर के कर्माटांग और रंगत के रामन बगीचा में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य समुद्र तटों को स्वच्छ बनाना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और तटीय एवं समुद्री पर्यावरण के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। इस अभियान में स्कूली छात्रों, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और NIOT की वैज्ञानिक टीम सहित 222 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अभियान में कुल 271 किलोग्राम समुद्री कचरा एकत्र कर उचित निपटान के लिए संबंधित पंचायतों को सौंप दिया गया। डिगलीपुर में हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश बनाए रखने तथा नागरिकों को स्वच्छ भारत के सपने में सक्रिय योगदान देने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रधान और खंड विकास अधिकारी ने पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेकर सभी हितधारकों के सहयोग का विस्तार करने तथा पूरे अभियान के दौरान सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8वां संस्करण नवंबर दिसंबर माह में तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन देश भर के युवा खिलाड़ियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। इस प्रतियोगिता में द्वीप समूह के अंडर 17 और अंडर 21 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियाँ भाग लेंगी। युवा कार्य एवं खेल निदेशालय और प्रशासन ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, संस्थानों, कॉलेजों, युवा क्लबों, खेल संघों और अन्य संबंधित हितधारकों से युवा खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। इन खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेल शामिल होंगे। द्वीप समूह में आज और अगले 5 दिनों तक एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी

वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 सितंबर तक समुद्र में ना जाएं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने द्वीप समूह में कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत किस्म की फसलों, बीज उत्पादन गतिविधियों और जारी फसल सुधार अनुसंधानों को प्रदर्शित करने के लिए कल ब्लूम्सडेल रिसर्च फॉर्म छोलदारी में खरीफ 2026 क्षेत्र दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्यारी के निदेशक डॉ. जयसुंदर, कृषि निदेशक डी. बसंतिया सहित प्रशासन के विभागाध्यक्ष, प्रमुख, दक्षिण अंडमान संस्थान के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों सहित 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने जारी विभिन्न शोध गतिविधियों और उन्नत किस्मों, प्रजनन सामग्रियों, बीज उत्पादन भूखंडों और फसल प्रबंधन तकनीकों का प्रदर्शन किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अरुंग और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बकुंतला में विभिन्न ट्रेडों की कुछ श्रेणियों में सीटें रिक्त हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन किया है और जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रत्यक्ष रूप से परामर्श सत्र में भाग लें। राजकीय ITI अरुंग, कार्निकोबार, बकुंतला और डॉलीगंज का परामर्श सत्र 23 सितंबर को सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्रों, दो हालिया पासपोर्ट आकार की फोटो और ₹950 का प्रवेश शुल्क लेकर परामर्श सत्र में उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत हाल ही में संपन्न एक अभियान में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों के समन्वय से पूरे द्वीप समूह में स्कूल स्तर पर दंत परीक्षण गतिविधियां आयोजित की गईं। जून से अगस्त की अवधि के दौरान द्वीप समूह के कुल 47 स्कूलों को शामिल किया गया। परीक्षण के दौरान दंत क्षय, मसूड़ों की समस्याएं सहित विभिन्न मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की गई। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के प्रति भी जागरूक किया गया। कार्निकोबार के BJR अस्पताल में कल आत्महत्या रोकथाम दिवस और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम, तंबाकू नियंत्रण, रोगी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना था। BJR अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ग्रेस ने इस विषय पर महत्वपूर्ण संदेश साझा किए। कार्यक्रम में पंचायत प्रधान, महिला प्रतिनिधियों, आम जनता, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेष आत्महत्या रोकथाम शपथ भी ली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हिंदी पखवाड़ा के तहत कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8वां संस्करण नवंबर दिसंबर माह में तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा और द्वीप समूह में अगले 5 दिनों तक एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागिनी नमस्कार श्रोताओं, देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, सूरज चाहे पूरब से निकले लेकिन उसकी रोशनी पूरी

देश को एक साथ उजाला कर देती है। हमारे भारत की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है। अलग अलग दिशाएं, अलग अलग रंग और अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन दिल एक और भावना एक है।

श्रोताओं, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अनगिनत रंगों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने भीतर समेटे एक खूबसूरत एहसास है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, हर कोना अपनी अलग अलग पहचान रखता है, फिर भी इसकी धड़कन एक है।

श्रोताओं, अपने देश से प्यार की कोई वजह नहीं होती। कभी इसकी मिट्टी से प्यार होता है, कभी इसकी बोली से, कभी इसकी संस्कृति से, और कभी उन लोगों से जो देश को अपनी मेहनत और मुस्कान से खूबसूरत बनाते हैं।

0: श्रोताओं, आप देश रागनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं।
1: नमस्ते, गोयनकास की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयन काज में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स, तो देर किस बात की। इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयन काज से। गोयन काज की तरफ से शुभ हो दुर्गा पूजा।
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

0: सामान्य है, लेकिन जब यह रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, हर साल 21 सितंबर को हम विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं ताकि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़े। तो आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम अल्जाइमर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर अल्जाइमर क्या है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं और मरीज के साथ साथ परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर मितुल शाह। मितुल शाह, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, ये हमारा सजीव प्रसारण है। यदि श्रोता अल्जाइमर से जुड़े कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने का फोन नंबर है 232558, हमारा एसटीडी कोड है 03192। हम पुनः दोहराते हैं फोन नंबर 232558, हमारा एसटीडी कोड है 03192। तो सबसे पहले डॉक्टर मितुल शाह, हमारे श्रोताओं को ये बताइएगा कि 21 सितंबर को हम विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना क्यों ज़रूरी है?
1: जी, जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी जो अल्जाइमर डिजीज के कारण हो रहा है उसके बारे में पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हम, उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसको ब्रेक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे करना है, स्क्रीनिंग कैसे करना है और अर्ली डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉपर केयर कैसे शुरू करें इन पेशेंट्स का।
0: जी, जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो अक्सर डिमेंशिया शब्द भी सुनने को मिलता है, क्या आप बड़े ही आसान भाषा में समझाएंगे कि डिमेंशिया क्या होता है और अल्जाइमर से इसका क्या संबंध होता है?
1: डिमेंशिया एक क्रॉनिक सिंड्रोम है जिसमें ब्रेन की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होते रहता है। इसमें मेमोरी, लर्निंग, ओरिएंटेशन जैसे कोई भी सामान कहाँ रखा है, मैं कहाँ हूँ, ये और कौन सा डेट चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, ये अपने पेशेंट को जो है याद नहीं रहता है। उनको लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पुरानी बातें याद रहती है बट जो नई नई चीज़ें हैं मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है और उनकी जो थिंकिंग है और जजमेंट है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है इस बीमारी में। सो अल्जाइमर्स डिजीज़ के रिलेटेड जो वर्ड डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी।
0: तो चलिए इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी सर, बताइएगा अपना नाम।
2: संतोष शर्मा का।
0: जी
2: दिप्ति से गलती हुई थी।
0: जी सर। जी सर। जी सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, प्रश्न रखिएगा।
2: प्रश्न ये है, ये जो भूलने की बीमारी
0: जी
2: ये
0: जी
2: जी
1: जी जी बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, आप जुड़े रहिएगा, हम जवाब देंगे।
1: जी बहुत धन्यवाद
0: सर। अपना जो रेडियो सेट है थोड़ा सा दूर रखिएगा। जी
1: हेलो। जी बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। डिमेंशिया जो है भूलने की जो बीमारी है उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, है ना। बहुत वैस्कुलर कॉज होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। वैस्कुलर कॉज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में भी देखा गया है कि भूलने की बीमारी होती है और इन सब बीमारियों में से एक बीमारी है अल्जाइमर। तो आज हम अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बात करें जिसका एक सिम्टम होता है डिमेंशिया। और आपने जैसे बोला कि क्यों होता है और सही, आपने एकदम सही बोला है कि 60 और अबव एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है। तो मेनली इसका जो पैथोजेनेसिस है वो ऐसा है कि जो हमारे नर्व्स होते हैं, न्यूरोनल सेल्स होते हैं, वो डीजेनरेट होते रहते हैं एज के साथ, डीजेनरेट होते रहता है एज के साथ। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है

नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, उम्र के साथ कभी कभार भूलना

0: मेमोरी है वो खराब हो रहा है। और एक चीज होता है कि एक प्रोटीन होता है अमाइलॉइड प्रोटीन, वो जमा हो जाता है हमारे न्यूरॉन्स में, उसकी वजह से भी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो मेमोरी फंक्शनिंग है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए देखा गया है कि ज्यादातर एल्डर एज ग्रुप में ये वाले सिम्टम्स देखे जाते हैं।
1: जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि होना चाहिए कि 65 अबाउ, लेकिन आजकल जो है बिलो 65 भी होता है। इसके भी जैसे कि आपने कहा कई सारे कारण हैं। जैसे नॉर्मली हम जो कभी कभार देखते हैं कि फ़ोन भूल जाते हैं, लैपटॉप भूल जाते हैं, या फिर जो भी सामान है भूल जाते हैं, क्या ये भी हम कह सकते हैं कि ये आने वाले जो बीमारी है अल्जाइमर है, इसके सिम्टम्स हैं?
0: जी, डिमेंशिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हेड इंजरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वैस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं। उसमें से देखा गया डिमेंशिया के जितने भी कॉजेज हैं उसमें से 60% अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से होता है।
1: अच्छा,
0: तो वो हमको रूल आउट करके ही पता चलेगा, बाकी सारे डिजीजेस को रूल आउट करने के बाद हमको पता चलेगा वेदर अ पर्सन हैज़ डिमेंशिया और मतलब अल्जाइमर्स और नॉट, जिनको डिमेंशिया का सिम्टम्स है।
1: जी। तो एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताइएगा और प्रश्न रखिएगा। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, डॉक्टर मित्तुल, अगर हम हमारे देश की बात करें तो यहाँ डिमेंशिया और जो अल्जाइमर कितनी बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, और इसका असर मरीज के साथ साथ उनके परिवार पर किस तरह पड़ रहा है?
0: जी, इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन जो है, मतलब 60 एंड अबव जो पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ी संख्या में है, और उनमें ये जो हेल्थ, ये जो अल्जाइमर की बीमारी है, वो बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। और जो अवेलेबल एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से लगभग 50 लाख 60 अबव जो लोग हैं उनमें ये भूलने की बीमारी देखी जाती है। और इसमें जो होता है, आपने जैसे बोला है कि परिवार, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है,
1: रोल
0: उनको
1: है।
0: बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है इन पेशेंट्स को। और जो पेशेंट ना लग जो पेशेंट को लगातार फैमिली मेंबर हेल्प कर रहा होता है, बहुत बार देखा गया है कि वो भी बहुत थक जाते हैं,
1: जी
0: क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। एक
1: जी
0: 15 साल एक पेशेंट को संभालना बहुत आसान बात नहीं है। तो हम ये बात पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारे पेशेंट के केयर टेकर्स है, केयर गिवर्स है, उनको भी, उनका भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए और उनको भी
1: थोड़ा सा
0: प्रॉपर,
1: सपोर्ट किया जाए।
0: एब्सोल्युटली
1: जी,
0: जी।
1: तो एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी सर, बताइएगा नाम बताइएगा और कहाँ से बोल रहे हैं आप।
2: हेलो,
1: हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
2: हेलो,
1: हेलो, प्रश्न रखिएगा सर। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी प्रश्न रखिएगा।
2: हेलो,
1: हाँ जी, तो किसी कारणवश जो है श्रोता से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो जैसे कि डॉक्टर मित्तुल शाह, आप बता रही थी कि जो केयर गिवर्स हैं उनको भी जो है सपोर्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो आपने बहुत ही सही कहा, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, वो भी एक इंसान है, तो उनका भी केयर करना जो है हम सबकी एक जिम्मेदारी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ते हुए उम्र के साथ हम छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, तो सामान्य उम्र से जुड़ी भूलने की समस्याएं और अल्जाइमर में हम फर्क यानी कि अंतर कैसे कर सकते हैं? खुद में कैसे हम ये फील कर सकते हैं कि हाँ, ये जो है अल्जाइमर नहीं है, ये जो है बढ़ती उम्र के साथ एक छोटी मोटी जो है भूलने की बीमारी है?
0: जी, एज बढ़ने के साथ वैसे कभी कभी छोटी भूलने की बीमारी होती है। मतलब कैसे, कोई भी सामान रखा हो वो भूल गए, स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है, एनजाइटी से रिलेटेड हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो सकता है। बट एल्जाइमर में देखा गया है इसका जो मेमोरी लॉस है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मतलब पहले सिर्फ मेमोरी इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद इंसान का सोचने का तरीका, उनका जजमेंट, कैलकुलेशन और ओरिएंटेशन, मैं कहाँ हूँ, कितना बजा है, खाने में क्या खाया था, अगर कल रात को कुछ खाया था तो भूल गए, या सुबह ही ब्रेकफास्ट किया आधे घंटे पहले और अभी वो भूल गए, तो ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगा, एक दिन में नहीं दिखेगा।

0: बट थोड़ा थोड़ा करके इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे. बट जो नॉर्मल भूलने की बीमारी है, जो कि हर एज ग्रुप में दिखता है, वो बीमारी नहीं है, वो तो हम केयरलेसनेस की वजह से बोल सकते हैं. बट इसमें क्या हो रहा है, एक पैथोलॉजिकल कॉज है, जो मैंने आपको समझाया कि न्यूरॉन्स डीजनरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भूल जा रहे हैं और वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है बेसिकली.
1: अच्छा, ये जो है हमें खुद पे ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी ज़्यादा भूल रहे हैं, या फिर घर वालों को जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर किसी व्यक्ति में अल्जाइमर की शुरुआत हो रही है, तो परिवार को कौन कौन सी शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो सकता है?
0: जी, सबसे पहले तो कॉमन सिम्टम्स है, जैसे मेमोरी लॉस हो गया, उसके साथ कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, एनजाइटी, फिर अगर टाइम के बारे में नहीं पता होना, घर में कोई पुराने रिलेटिव्स आए हैं तो उनको नाम ना पता होना. कभी कभी देखा गया है कि एक फादर अपने बच्चे ही भूल जाते हैं, तो उनका नाम भूल जाते हैं, कितने बच्चे हैं वो भूल जाते हैं. तो वैसे टाइम में हमको वही सिम्टम्स को ध्यान रखना है. और डिफ़िकल्टी होती है इन पेशेंट को ये सब चीज़ें याद रखने में, इसलिए बेसिकली उनको कैसे कम्युनिकेशन करने में, रीड करने में, राइट करने में, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा जब हमको दिखता है कि तकलीफ होना शुरू हुआ है, एज के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो हमको इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है और हमको अपने पास के सरकारी दवाखाना में जाके दिखाना चाहिए और फिर
1: जी।
0: बाद में रेफरल होगा शायद.
1: क्या ये बीमारी केवल याददाश्त को प्रभावित करती है, या समय के साथ साथ व्यक्ति को सोचने, समझने या फिर बोलने के, निर्णय लेने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है?
0: जी, बिल्कुल, उनके और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है. बहुत बार देखा गया है एग्रेशन देखा गया है, गुस्सा हो जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रह रही है, और फिर बहुत बार कैसे रेस्टलेसनेस होती है, तो ये सारे सिम्टम्स भी एसोसिएटेड है. जी
1: तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपसे, कि इस तरह के जो बदलाव हैं हम अपने परिवार के किसी सदस्य में यदि देखते हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य को कब यह समझना चाहिए कि अब डॉक्टरी सलाह लेने की बहुत ज़रूरत है?
0: जी, अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और वो अभी कैसे फैमिली मेम्बर्स को भी याद नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं, जजमेंट मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये सारी पैटर्न जब हमको दिख जाता है, जितनी जल्दी दिखता है. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक जेनेटिक बीमारी भी है. तो एक जेनेटिक, एक जीन है जो कि कहते हैं EPO E4 जेनरेशन जीन, तो
1: जी
0: ये वाला जीन की वजह से हमने देखा है कि फैमिली में किसी ना किसी को ये बीमारी पहले से था.
1: अच्छा, जेनेटिक हो तो
0: जी, तो ये वाले पैटर्न अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी है, तो जब ये सिम्टम्स आए तो आप अलर्ट हो जाइए और आप जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस के लिए लेके जाइए अपने पेशेंट को.
1: जी तो इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं हम।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मितुल शाह, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार।
4: हेलो
3: जी, अपना नाम बताइएगा।
4: नमस्कार जी।
3: जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, प्रश्न रखिएगा सर। हेलो
4: हेलो, नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी बोलिएगा, कार्यक्रम में स्वागत है।
4: रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम फ्राइडे को हेलो डियर फ्रेंड में इसके बारे में बताया जाए कि टॉपिक क्या है
3: जी।
4: और दूसरा, और ये आप अपना प्रस्तुतकर्ता मैडम का नाम भी बोला जाए। मेरे दो सवाल है
3: जी।
4: जैसे आजकल मोबाइल का टाइम है तो मोबाइल में लोगों के नंबर याद नहीं होते, नंबर के लिए हमें बार बार मोबाइल खोल के नंबर चेक करने पड़ते हैं। तो पहले तो हमें 40-50 नंबर

0: याद रहते थे। और दूसरा ये आजकल जो बच्चों को भी अच्छा बच्चा पढ़ने में होता है, पर पढ़ाई में वो तेज होता है पर एग्जाम में वो भूल जाता है।
1: जी
2: हेलो,
1: कृपया अपना रेडियो सेट जो है थोड़ा सा दूर रखिएगा सर।
0: इसमें ये बात है
1: जी
0: कि जो बच्चे के लिए क्या करा जाए, उनकी भूलने की बीमारी ना रहे, और भूलने से अखरोट खाने से कहते हैं थोड़ी सी बुद्धि दिमाग तेज होता है।
1: जी इनका सवाल है कि जैसे कि पहले के टाइम एक रहता था, जी पहले के समय में ऐसा होता था कि कई लोगों को जो है 40 से 50 नंबरें याद रहती थी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब जो है वो भूलने लगे हैं, इवन याद तक कि 10 नंबर तक हमें जो है अच्छी तरीके से याद नहीं रहता। ये बहुत ही सही बात है। और ये भी पूछ रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो घर पर तो अच्छे से याद करके जाते हैं, लेकिन जैसे वो एग्ज़ाम अटेंड करते हैं वो भूल जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप डॉक्टर मित्तल शाह?
3: जी जो पहला सवाल था आपका वो बहुत हद तक हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारी मेमोरी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, सब्सटेंस यूज से रिलेटेड है, शराब पीने की आदत, सिगरेट पीने का आदत, स्मोकिंग जो होता है, और हमारा जो खान पान का तरीका है, सोने का हैबिट, एनजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे हमारे मेमोरी को इम्पैक्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा।
3: और इसकी वजह से भी हमारा भूलने की बीमारी ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल के टाइम पर। उसके अलावा जो आपने बच्चों का टॉपिक निकाला है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज हम अल्जाइमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बीमारी है, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है, जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में होता है,
1: बच्चों में जो होता है वो जो है हम एक कह सकते हैं कि कॉमन सी बात है, बच्चे जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। जी तो जैसे कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इसमें, लाइफस्टाइल जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, तो किस तरह का लाइफस्टाइल हम अपना रखें जिससे कि इस तरह की जो बीमारी है उनसे हम दूर रह सकें?
3: जी सबसे बड़ा कारण देखा गया है जो है सब्सटेंस यूज़। तो जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उससे दूरी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने लाइफ में जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, जैसे चेस खेलना हो गया, कोई बोर्ड गेम्स हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा ब्रेन का जो है एक्सरसाइज होने लगता है। तो इससे हमारा जो ये जो प्रॉब्लम है भूलने की बीमारी या डिमेंशिया जैसी बीमारी, उसको हम कहीं हद तक स्लो प्रोग्रेस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। और जो जैसे हेल्दी डाइट है उसमें हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, उनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन घर का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इवेंचुअली हमारे मेमोरी को भी इम्पैक्ट करते हैं।
1: जी अगर हम जांच की बात करें तो इसकी जो जांच है वो किस तरह से होती है, क्या कोई ब्लड टेस्ट होता है, स्कैन होता है, MRI होता है, जांच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
3: जी डायग्नोसिस के लिए एक तो स्क्रीनिंग सबसे पहले है कि हमको अलर्ट रहना है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको प्रोग्रेसिवली देखना है कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री लेता है।
1: अच्छा।
3: कि कब से शुरू हुआ है, फैमिली में किसी को है कि नहीं, और फिर ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो पूछते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टेस्ट्स है उसके हिसाब से हम ब्लड टेस्ट रन करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, उसके अलावा मिनी मेंटल स्कोर असेसमेंट एग्जामिनेशन वो भी है हमारे पास। उसके अलावा हम छोटे छोटे टास्क देते हैं पेशेंट्स को, तो वो बेसिकली हमको रिपीट कर पा रहे हैं कि नहीं और वो उनको याद रख पा रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हमें इवैल्यूएशन करते हैं।
1: जी इस तरह के यदि कोई टेस्ट कराए तो पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है अल्जाइमर से जूझ रहा है।
3: जी
1: डॉक्टर मित्तल, अल्जाइमर होने पर हमारे दिमाग के अंदर आखिर किस तरह बदलाव होते हैं, क्या इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन या जेनेटिक कारण भी हो सकता है?
3: जी जो ये बीमारी है वो एज के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें बेसिकली जो न्यूरॉन्स है वो डीजेनरेट हो रहा है, मतलब वो ख़राब होने लग रहा है। और उसके अलावा हमने देखा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं एबनॉर्मल प्रोटीन, अमायलॉइड प्लैक बोलते हैं उसको, वो हमारे जो न्यूरल सेल्स है उसमें जाके अटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन रुक रहा है, जिसकी वजह से मेमोरी ख़राब हो रही है। उसके अलावा देखा गया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीन

0: एपो ई ई फोर जनरेशन जीन जो है वो फैमिली में अगर प्रेजेंट होता है तो देखा गया है कि उसकी वजह से एल्जाइमर पीढ़ी दर पीढ़ी एक जन से दूसरे जन पे ट्रांसफर हो रहा है।
1: जी, कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी जो है इस तरह की बीमारी से जूझ रही है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या वो धीरे धीरे इस बीमारी की ओर बढ़ रही है?
0: जी जैसे
1: क्योंकि
0: देखिए
1: आजकल इतना स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस होता है,
0: जी
1: कहा जाता है कि 4 GB का हमारा माइंड है लेकिन 6 GB का भार लेके जो है हम घूमते हैं।
0: जी ऐसा है कि जो डिमेंशिया है वो बहुत कॉमनली दिखता है, भूलने की
1: अच्छा।
0: बीमारी जो है वो बहुत कॉमनली दिखता है। उसके कॉजेज हो सकते हैं वैस्कुलर इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल, कोई इंजरी हो गया, हेड इंजरी हो गया, और या फिर बहुत सारे लिवर की डिजीज़ या किडनी की डिजीज़ जो प्रोग्रेस हो चुका है, उसके बाद भी बहुत सारे मेमोरी रिलेटेड सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ये पहले हमको जानना ज़रूरी है कि हर डिमेंशिया एल्जाइमर नहीं
1: अल्जाइमर
0: होता,
1: नहीं है।
0: बट 50 to 60% भूलने की बीमारी एल्जाइमर होता है। बट जो बाकी कॉजेज है उसको हमको पहले रूल आउट करना होता है, तभी हम एक डायग्नोसिस में पहुंचते कि ये अब एल्जाइमर का ही डिजीज है, बाकी जो कॉजेज है वो इस केस में नहीं लागू होता है।
1: जी, अगर किसी व्यक्ति में अल्जाइमर की पुष्टि हो जाए तो क्या इसका पूरी तरह इलाज संभव है? अभी इसके इलाज में किन दवाओं या उपचारों का इस्तेमाल किया जाता है?
0: जी अल्जाइमर डिजीज जो है उसका कंप्लीट क्योर अभी भी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास दवाइयाँ हैं जिससे हम डिजीज़ को स्लो कर सकते हैं प्रोग्रेशन को। हमारे पास एक दवाई, इस दवाई का नाम है कोलिनेस्टरीज इनहिबिटर्स, और
1: अच्छा।
0: एक दवाई है हमारे पास जिससे जो डिजीज़ है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? जो प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था, एबनॉर्मल प्रोटीन, तो उसको हम हटवा सकते हैं। मतलब वो जो दवाई है वो उसको टारगेट करता है, उसको हटा देता है, और उसकी वजह से वापस से ब्रेन का फंक्शन रिस्टोर हो सकता है। और उसके अलावा जो हमने देखा है कि ये तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ना,
1: जी
0: दवाई खा के जो ठीक कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट है। उसके अलावा भी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं,
1: अच्छा।
0: जिसमें रेमिनेसेंस थेरेपी, वैलिडेशन थेरेपी, रियलिटी ओरिएंटेशन और कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता है।
1: जी
0: मैं आपको विस्तार में बताना चाहती हूँ कि रेमिनेसेंस थेरेपी क्या होता है।
1: जी
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखा गया है कि इनमें जो पेशेंट है उनका लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटैक्ट होता है, तो
1: अच्छा।
0: उनको पुरानी बातें, उनकी शादी, उनका मतलब कैसे कोई भी पुराने टाइम का इवेंट उनको बहुत क्लियरली याद रहता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको पुरानी चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रखें। तो घर पे आप फोटोग्राफ्स लगा दो, शादी का फोटो, कोई इवेंट का फोटो, उनका अगर बच्चा हुआ है तो उन चाइल्ड बर्थ के टाइम का फोटो, सो वो सब फोटोज़ रखो, पुराने मूवीज़ चलाओ, पुराने गाने चलाओ।
1: जी
0: तो इसमें क्या होता है, वो पुराने यादों को याद करके वो कंफर्टेबल हो रहे होते हैं। उसके अलावा देखा गया है वैलिडेशन थेरेपी। वैलिडेशन थेरेपी में हमको उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। ये बहुत ही
1: अच्छा।
0: स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो इंसान डिमेंशिया से या अल्जाइमर से जूझ रहा है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, और हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम है। तो इसमें हमको कोशिश करना है कि वो एंशियस ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, तो उनको जो जो चीज़ याद है उसको हमको प्रॉपरली वैलिडेट करना है। उसके अलावा देखा गया है रियलिटी ओरिएंटेशन, ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें हम उनको टाइम टाइम से न्यूज़पेपर से इंट्रोड्यूस करते हैं, घड़ी के साथ ओरिएंट करते हैं कि इतना बजा है और आज का डेट क्या है, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो
1: जी
0: रियलिटी ओरिएंटेशन, अगर घर पे कोई गेस्ट आया तो उन पे आप बोझ मत डालो कि वो उनको याद करे या कौन है करके, आप पहले से आगे से उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो इससे क्या है कि इंसान रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस नहीं होती, एनजाइटी नहीं होती। उसके अलावा और एक देखा है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, तो छोटे मोटे जो गेम्स होते हैं जिसमें मेमोरी की ज़रूरत हो रही है, चेस हो गया या फिर कोई बोर्ड गेम हो गया, तो वो इंट्रोड्यूस करना है उनके लाइफ में ताकि वो बिजी रहे और उनका ब्रेन का एक्टिविटी स्टिमुलेटेड रहे।
1: जी, कहने का तात्पर्य यही है कि उनके साथ जो है हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है बुज़ुर्गों के साथ कि वो जो है पुरानी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तस्वीरें देखते हैं, पुरानी गीतों को सुनना पसंद करते हैं और ज़्यादा वो जो है अपने बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो यही है कि जितना आपने बताया जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो जो है उनको करती रहना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल जो है उनमें भी थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जी, ये आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंचाई है डॉक्टर मित्तल जी। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलाज और देखभाल की बात हुई है तो क्या स्वस्थ जीवन शैली, खान पान भी अल्जाइमर के जोखिम को कम करने या बीमारी की शुरुआत को देर करने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? किन चीज़ों का विशेष

0: ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, जैसे लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने आपको बताया। ऐसा भी बोला गया है जो जो लोगों को ऑलरेडी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फैमिली में किसी को है, उनको तो नशा से दूर रहना ही चाहिए। ना शराब, ना सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको वैसे भी वो प्रीडिस्पोजिशन है, तो वो बीमारी आने को ही है। तो आप अगर ये हेल्दी हैबिट्स और स्टार्टिंग से ही लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करें और फिर गेम्स इंट्रोड्यूस करें अपने लाइफ में, जो कि मेमोरी गेम्स है, चेस है, फिजिकल एक्टिविटी है, और हेल्दी फूड अगर आप इंट्रोड्यूस करें अपने लाइफ में और अल्कोहल और टोबैको से दूर रहे, तो भी देखा गया है कि आप इस डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक स्लो प्रोग्रेस करवा सकते हैं।
0: जी, आपसे बातचीत तो और भी हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय की कमी है। तो कार्यक्रम के अंत में आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: जी, संदेश में आज इस बार का जो थीम है, 21 सितंबर 2026 वर्ल्ड अल्जाइमर डे का जो थीम है, वो है अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू, अ डिमेंशिया डायग्नोसिस मैटर्स। तो बेसिकली हम इस साल हम अवेयरनेस और ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता हो। अपने ही घर में जब हमारे बुज़ुर्गों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो इनको प्लीज़ प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, उनका साथ दें और उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। और अपने लिए भी, जो केयर गिवर्स है, उनके लिए भी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें, और उनको कैसे आप सारे फैमिली मेम्बर्स मिल के ध्यान रखें एक पेशेंट का, ना कि एक ही इंसान पर बर्डन आए।
0: जी, तो डॉक्टर मितुल शाह, आज आप इस कार्यक्रम में आई, आपने अल्जाइमर दिवस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम में आने, अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर सुन रहे थे। विषय था विश्व अल्जाइमर दिवस। विशेषज्ञ थी सीनियर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर मितुल शाह। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी के अनीता कुमारी। तकनीकी सहयोग दिया सीएच सदानंदम ने तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला APTO-SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: The government is supporting the sector through technology transfers.
7: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़

0: रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सुयश सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं, साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
2: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
0: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
4: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर

0: पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8:31 और 27 सेकंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं रेणु चौधरी और विजय चौधरी। साथ ही ताहिरा सैयद के गाए कुछ गीत और गजलों का भी आप आनंद लेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं रेणु चौधरी की आवाज़ में कतिल शिफाई का कलाम।

एक फकीर उधर से गुजरा, उसने पूछा कि क्यों मारा। जवाब मिला कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो उस फकीर ने कहा कि ठीक है, सबसे पहला पत्थर वो शख्स उठाए जिसने आज तक कभी कोई गुनाह ना किया, और नतीजन सबके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। वही बात इस शेर में आ पाए।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में रेणु चौधरी, विजय चौधरी और ताहिरा सैयद की आवाज़ों में चंद गज़लों का लुत्फ़ ले रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं गाइड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र की रचना है व धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ड्राइव स्मार्ट, ड्राइव मारुति सुजुकी ऑल्टो केटन, जिसमें है माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर। स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, नेक्स्ट जेन की सीरीज 1.0 लीटर ड्यूल जेट, ड्यूल विविटी इंजन और स्पेशियस इंटीरियर्स। बाय ऑफर्स अप टू 40,500। ऑफर्स स्टॉक रहने तक ही।
5: आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति डीलरशिप। शर्तें लागू।
6: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की,

0: चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
1: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग्य लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आया, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में CEO बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
0: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
0: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।

0: 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ। तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये कि मुझे ध्यान में, और जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म
1: जी
0: के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते
1: जी
0: हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो, अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो
1: जी
0: वो बड़े स्केल पर सोचते हैं। तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, मतलब बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को, आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे, और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
0: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो

0: कहीं जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है?
1: हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे ज़मीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो हैं वो वहीं उस स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया, तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में, और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ, तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी,
0: बिल्कुल
1: तो ये हुआ है
0: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं, तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
2: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं, आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
0: जी,
2: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
0: बिल्कुल,
2: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
0: जी,
2: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
0: जी जी।
2: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशन कितने हैं।
0: बिल्कुल,
2: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशन है, सुरक्षा के डायमेंशन है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही है या नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-35

0: 35-37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल
0: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया,
1: बिल्कुल
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी सी छोटी योजनाओं को भी

0: मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी सी छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसकी डिलीवरी होती है, तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है।
1: जी
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चर आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया, और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे। तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कंपटीशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए, इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, ये किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है देश।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
0: मानव के

0: सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना. अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता ईश्वर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया. अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया. पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
0: वो अब दिव्यांग हो गया
1: जी.
0: वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना. तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी. तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है. प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है. तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी जी,
0: तो वो भी एक अलग से ये थी. तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल.
0: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी.
0: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे. ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं.
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया. तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे.
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले. तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें. तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक. तो हम लोग लगे बहुत और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था. तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं. और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ. पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया. तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए और ये बहुत मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव.
1: जी अब बिल्कुल सही कहा. और प्रफुल्ल जी जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
0: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए. तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता. तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी. तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशल

0: ये भी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है।
1: जी
0: तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये
1: बिल्कुल,
0: प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
1: ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, उभरती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
2: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे, और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग थी, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ, वहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहाँ के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा, और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई। ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया थे। ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए, और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है, और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
0: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक
1: में है जी,
0: महत्वपूर्ण भूमिका है। तो
1: आसियान।
0: बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी
1: बात
0: बात कर
1: सकते
0: सकते
1: हैं,
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में
1: बिल्कुल
0: शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर
1: रैली
0: हुआ
1: था
0: तो उस
1: उसमें।
0: समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल, और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना

0: चाहती हूँ कि जनहित से जनविश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047, और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे, और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक।
0: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जनविश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:46:09 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चंद फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है दूध का कर्ज फिल्म से। गायक कलाकार है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज। गीतकार है आनंद बख्शी व संगीतकार है अन्नू मलिक।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज की फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। समीर के बोल को सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कहानी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी ने। गीत और संगीत विशाल दादलानी और विशाल शेखर का।

अब पेश है प्रीतम का, नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ, प्रीतम का संगीतबद्ध किया, एजेंट विनोद फिल्म का गीत, गाने वाले कलाकार हैं नंदिनी श्रीकर, मुज़्ज़ाम रिजवान व साथी।

0: श्रोताओं, कशिश कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ईबीएस और ईएसपी हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
3: श्रोताओं, कशिश कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। अनजाना अनजानी फिल्म में आइए अब सुनते हैं शेखर रवजानी कैरलीजा मोंटेरियो व अमिताभ भट्टाचार्य की मिली जुली आवाज़ों में इस गीत को। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य व अन्विता दत्त ने व धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं हाउसफुल टू फिल्म का गीत। गायक कलाकार है सुनिधि चौहान और वाजिद, गीतकार है समीर अंजान और संगीतकार है साजिद वाजिद।

जोड़ी ब्रेकर्स इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है शफकत अमानत अली और क्लिंटम सीरीजो ने, बोल इरशाद कामिल के हैं तथा संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक मैं और एक तू फिल्म से। आवाजें हैं अमित त्रिवेदी, शिल्पा राव, निखिल डिसूजा और अमिताभ भट्टाचार्य की। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं तथा संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

नीरज, श्रीधर, सिद्धार्थ, बसरूर और मौली देव की आवाज़ों में आइए सुनते हैं प्लेयर्स फिल्म का ये गीत। बोल आशीष पंडित के हैं तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

डॉन 2 इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है अनुषा मनी और विशाल ददलानी ने। बोल जावेद अख्तर के हैं तथा संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

मोहित चौहान और अनमोल मलिक की आवाज़ में आइए सुनते हैं गली गली चोर है इस फिल्म का ये गीत। बोल राहत इंदौरी के हैं तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आइए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाज़ें हैं उदित्य नारायण और साधना सरगम की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं तथा संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म सौदागर से, जिसे गाया है मनहर उदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर ने। बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में के रहने वाले हो जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के ये चयन प्रक्रिया किसी भी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। आईना, इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी ने, बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म डर से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और अभिजीत की, बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है शिवहरि ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। आइए आपके मनोरंजन के लिए अब प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म लेडीज टेलर से। आवाज़ें हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के, बोल मजरू के हैं तथा संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दमन से, जिसे गाया है नूर जहन ने, बोल हिमायत अली शेर के हैं तथा संगीत दिया है खलील अहमद ने।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। चितलकर और गीता दत्त की आवाज में आइए सुनते हैं सकी फिल्म का ये गीत। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं तथा संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म ठोकर से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी के, बोल साजन देहलवी के हैं तथा संगीत दिया है समझ घनश्याम जी ने।

हेमंत कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं कोहरा फिल्म का ये गीत। बोल कैफे अजमी के हैं तथा संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

हम शक्ल इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कहीं और चल से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। बोल शैलेंद्र के हैं तथा संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: മലയാളം പ്രക്ഷേപണം വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. നമസ്കാരം.
1: श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे. मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं. अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

0: समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने

0: Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. Assam is remembering iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary today. The state has also been observing a three-day Zubeen Divas since September 17th. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चंद गीत।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया कृषि नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम।

नंबर पर हमें अपना नाम, गीत के बोल, अपना पता लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सके। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपन टाइडे और आशीष मुनेहर का, जो सुनना चाहते हैं फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये गीत।

बीड शहर महाराष्ट्र से हमें फरमाइश आई है नंद किशोर घटे, संगीता घटे और साक्षी घटे का, जो सुनना चाहते हैं फिल्म साथ साथ का ये गीत।

सदर मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हमें मैसेज किया है रमेश चंद्र चौहान ने, जो सुनना चाहते हैं फिल्म अनुपमा का ये गीत।

फिल्म इलाका का ये गीत सुनना चाहते हैं सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का

0: उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें

0: शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

6.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं।

6.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को सूचित किया जाता है कि द्वीपों में आज और कल भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आसपास के इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से के रफ्तार से रहने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर घंटा हो सकता है। समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा, ऐसी स्थिति में मछुआरों को 22 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश भागों में वर्षा होने अथवा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:23 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए, तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाया गया जो जीता वही सिकंदर, सिर्फ तुम, दिल तो पागल है, हम दिल दे चुके सनम, ये दिल आशिकाना जैसे फिल्मों के गाने।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 3:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मिशन मंगल से, जिसे गाया है रूप कुमार और सोनाली राठौड़ ने। बोल जाफिर सागर की है तथा संगीत दिया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म जिंदा दिल से। आवाज़ें हैं उदित नारायण की, बोल समीर की हैं तथा संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में आइए सुनते हैं मैरी कॉम फिल्म का ये गीत। बोल संदीप सिंह की है तथा संगीत दिया है शशि सुमन ने।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा के आरंभ में पेश हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्लामनिन ये रोखरा हमांग इंगिरे तवा लामक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्ये निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिन कातलोन ही इंगला हराप मिन कातलोन ही तरण मिन महावुद क्रिचोग लामक होयने कुन पनम ही एमवी स्ट्रेट आइलैंड किरण ग्रामीण नंचु माय बंदर तड़कलीपुर इप्त नेरने काहुक अलाउ चिंगेट इत सट कजो तला पुहु निलक्ने फोनिक्स पे चर्टी ने इप्त नेरने नेट अलाउ चिंगेट इत सट कजो तला पुहु मिन नरांग दिक्लीपुर हेक एडमिनिस्ट्रेट माय बंदर अरताले करन हवन नेचु श्री विजयपुरम किरण ग्रोरिक नमचोंग एमवी कैंबल बे नंचु लिटिल नमा इत माचु तरकनरो तला पुहु निलक्ने डवा फाच इलरन मिन हवन इपे इत माचु तरकनरो तहतम नरांग लिटिल नमा हवन नेचु श्री विजयपुरम हेक मिन इंट्रिंग अमचोंग एमवी कैमल बे नंग असुन गरे नंग चुली डेले नमान इप्त नेरा नाइन नेट अलाउ चिंगे इत सम कन रो तला पुहु न लक नेहड़ वाफ मच इलरेन मिन नहावन इप हे इत माचुस्तर कन रो तहतम नरांग ली डेले नमान नहावन न चुस श्री विजयपुरम तीन ट्रे मिन गमचोंग एमवी भारत सीमा नंग चुली डेले नमान इप्त नेरा नाइन फैन अलाउ चिंगे इत हेव कन रो तला पुहु न लक नेहड़ वाफ मच इलरेन मिन नहावन इप हे इत माचुस्तर कन रो तहत नरांगली डेलनमान नहावन नचुश्री विजयपुरम किरण गिरोरिक नमचुंग एमवी सेंटिनल नंगचु लिटिलनमान तका निकोबार इत सटकनो तला पुहु लिक नेहडवाफ ngat ipta naranai kahuk alangu chinget min ita fan kanro tala harap narang ka nikobar hek an minasik lidilanaman altala karan hawan nachusri vijayapuram hek min ngamchung mv sandinal

0: Kekanya Daniel Wilkinson a urekan tahingam mana a ang yitin keka. Hoye hangatel nga ang in ngat sinta mo hik in huric hangrong ite kasate ite fan kanyo tala harap ngayen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय

देता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करें, कहाँ उत्पादन करें और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है। ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है। यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुर

0: आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है। उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है। ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो। दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति। यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता। एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के

0: लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5:00 तमिल में युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा। बंगला में 5:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम के तहत सिप्पी घाट की श्रीमती गीता देवी से बातचीत होगी। विषय रहेगा मुर्गी पालन, छोटा कारोबार, बड़ी उम्मीद। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। 6:45 पर आप सुनेंगे मृणाल पांडे की लिखी झलकी खेल। 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युववाणी के तहत 7:30 पर कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार और गौरवगान आप सुनेंगे 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में गायन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा गंध पाश और ट्राइकोडर्मा से कीट प्रबंधन। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा घुंघरू शीर्षक पर।

रामचरित मानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर आप सुनेंगे गौरव गान। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का समय रहेगा 7:15। जबकि FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर कल 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत का कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे बेला सावरे और भूपेंद्र। सुबह 9 बजे बाल जगत कार्यक्रम में सपनों की उड़ान और सोशल मीडिया का उपयोग पर चर्चाएं आप सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर गंगूबाई हंगाल का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। सैनिकों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। 11:30 पर गजलों के कार्यक्रम में आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान और मेहदी हसन को। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुराने गीत और विश्वविद्यालय दिवस पर चर्चा। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर विश्वविद्यालय दिवस पर चर्चा होगी। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कृष्ण कल्ले और बेगम अख्तर। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत लहरी। 3:30 पर कार्यक्रम होगा एल्बम टाइम। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे सेंट मेरी मैग्डलिन मलाका के सदस्यों से भक्ति गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा शाम 4:30। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा शाम 4:45। 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर फिल्मी गीतों के अलावा विश्व सफाई दिवस पर चर्चा आप सुनेंगे। संध्या 6 बजे महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संगीत संगिनी सेवा संकल्प अभियान, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। देश गान का समय रहेगा 6:45। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवावाणी के तहत 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार और गौरवगान का समय रहेगा 8:30। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियोस्कोप और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में वी टी वेंगा सांद्रा गोपाल एवं पार्टी से नाद स्वरम वादन से होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं राजा बाबू फिल्म के इस गीत के साथ पूर्णिमा और साथियों के आवाजों में। बोल समीर के और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

इस गीत को गा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरेनी, और ये फिल्म का नाम है लागा चुनरी में दाग।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए शान और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में ये गीत, जिसे लिखा है शाहरुख सुल्तान ने, तर्स बनाई है अब्बास जिलानी ने, फिल्म का नाम है जाना।

0: जाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय है शाम के 5 बजे, प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वणकम तमिल मुदम वणकम नेहले

0: श्रोताओं, ये था तमिल कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है शाम के 5:30। अब सुनिए बंगला कार्यक्रम।
1: कर्म करे जाओ, फलेर प्रत्याशा करो ना, भगवद गीता। नमस्कार बंधुरा, আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ রয়েছে প্রবীণ শ্রোতাদের জন্য শ্রদ্ধাভাজনের সুরাসর।

0: श्रोताओं, ये था बंगला कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे है, प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान वाणी सुनने वाले मेरे सभी प्यारे किसान भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का खेती किसानी के इस बेहद खास कार्यक्रम में। साथियों, अन्न के कर्ण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे, दोनों अमूल्य है। हमारी भावनाएं चाहे दुख हो या सुख, अमूल्य है। अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को केवल सही जगह और सही लोगों पर ही लगाए, क्योंकि बीता हुआ समय और बहे हुए आंसू कभी लौटकर नहीं आते। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो गया है हमारे आज के प्रश्न का। और आज का प्रश्न है, बीजू नारियलों के लिए किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए? साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, बीजू नारियलों के लिए किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए और इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। महंगी खाद और कीटनाशकों के खर्च से परेशान किसान भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अब हमारी देसी गाय के गोबर और गोमूत्र के दम पर कम लागत में दोगुना मुनाफा देने के लिए तैयार है। तो साथियों, देर किस बात की, आइए सुनते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में एक चर्चा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण दूरदर्शी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में रसायन मुक्त जैविक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत मिलने वाले सभी सरकारी लाभ सीधे किसानों को एक तय सरकारी प्रक्रिया के जरिए मिलते हैं। किसानों को बाजार से महंगे रासायनिक उर्वरक और जहरीले कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद और दवाइयां घर पर ही देसी गाय के गोबर गोमूत्र से मुफ्त जैसी लागत में बन जाती है।

0: इस मिशन से जुड़ने वाले पात्र किसानों को ₹15,000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। प्राकृतिक तरीके से उगे अनाज, फल और सब्जियों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। सरकार द्वारा मिलने वाले सर्टिफिकेट यानी मान्यता के बाद किसान अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। जब खेती की लागत न्यूनतम हो जाती है तो किसानों को खाद बीज के लिए साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, यह कहना उचित ही होगा कि इस योजना से किसान, जमीन और आम इंसान तीनों के लिए फायदेमंद है। इससे किसानों का खर्च बचता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और आम जनता को बीमारियों से बचाने वाला शुद्ध भोजन मिलता है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बीमार होने से बचाना है और अपनी खेती को घाटे से उबारना है तो हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना ही होगा। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का एक ही मंत्र है, कम लागत, जहर मुक्त खेती और दोगुना मुनाफा। साथियों, इस मिशन से जुड़े और कहे, स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान, यही है नए भारत की पहचान। किसान भाइयों, अभी आप राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत चर्चा सुन रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने की सोच और उससे जुड़ी उम्मीदें बड़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सच है कि बड़ी सफलताओं की शुरुआत छोटे और बुनियादी कदमों से होती है। आज के दौर में मुर्गी पालन एक ऐसा ही व्यवसाय बन चुका है जो कम लागत और छोटी जगह से शुरू होकर एक आम इंसान और किसान को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी उम्मीद देता है। हौसले अगर बुलंद हो तो एक छोटा सा बिजनेस भी आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला उद्यमी है जिन्होंने मुर्गी पालन के छोटे से कारोबार से अपनी बड़ी उम्मीदों को सच कर दिखाया है। जी हाँ, आइए सुनते हैं श्रीमती गीता देवी जी से की गई यह बेहद प्रेरणादायक और खास बातचीत। विषय है मुर्गी पालन, छोटा कारोबार, बड़ी उम्मीदें।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप क्या करती हो।
2: मेरा नाम गीता देवी है, मैं सिपीघाट में रहती हूँ। मैं मुर्गी पालन करती हूँ। मैं SHG ग्रुप में जुड़ी, NRL ग्रुप में। वहाँ से हमने मुर्गी का ट्रेनिंग किया है और वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला। फिर हमने मुर्गी बच्चा खरीद कर मैं मुर्गी पालती हूँ।
1: अच्छा, गीता देवी जी, आप मुर्गी पालती हैं। मुर्गी पालने का जो आपको ख्याल आया कि चलो मैं मुर्गी भी पालूं, तो आपने कैसे सोचा कि आप मुर्गी पालें?
2: मुर्गी पालने मैं घर बैठी थी, क्या करूंगी, ऐसी बैठी मैं। फिर मुर्गी पालने का ट्रेनिंग मिला, फिर उसमें गई, तो फिर वहाँ से हमको इच्छा बढ़ी कि मैं मुर्गी पालूंगी। उसमें दो पैसा मिलते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं उनको चार पैसा कमाने के लिए मुर्गी पाल के कमा सकते।
1: जी बिल्कुल। हाँ गीता देवी जी, आपके पास अभी टोटल कितनी मुर्गियाँ हैं?
2: अभी तो 20-25 ही है, आधा तो बिक्री कर दी।
1: आप देसी मुर्गी पालते हो?
2: देसी भी है और वनराज मुर्गी पालते हैं।
1: वनराज मुर्गी और देसी मुर्गी में क्या अंतर है?
2: देसी मुर्गी जो है, हम लोग जो देसी मुर्गी को पालते हैं वो तो बाहर घूम के चरता है, बाहर घूम के उन दाना देने से वो अपना घूम के खा पी के अपना घर आ जाती है। लेकिन वनराज मुर्गी को क्या है, हम लोग घर में रख के एक पिंजरे में रख के फार्मिंग बनाना पड़ता है। फार्मिंग बना के उसमें हम लोग पालते हैं, तो उस मुर्गी को हम लोग लेके आने से उनको वैक्सीन देना होता है अपने कितने दिन में। जब हम नए बच्चे लाते हैं तो मुर्गी को 7 दिन में हम लोग को वैक्सीन देना पड़ता है
1: जी।
2: फिर उसके बाद में 14 डेज में एक बार एक वैक्सीन देना होता है। फिर उसके बाद 21 डेज में फिर एक वैक्सीन देना होता है
1: जी।
2: तो उस तरह में क्या, मुर्गी को बीमारी नहीं होगी वैक्सीन देने से। और उसके बाद फिर मुर्गी को दाना देना है, हम लोग मुर्गी के लिए RSN से दाना लेके आते हैं।
1: अच्छा।
2: पानी देते हैं, दाना देते हैं। छोटे बच्चों को, मुर्गी को छोटे बच्चों को वो भी बच्चों की तरह देखना पड़ता है।
1: आपको कैसे पता चलता है कि अभी जो है ये मुर्गी बीमार है, इसे इलाज की जरूरत है, आप कैसे पता लगा लेते हो?
2: मुर्गी तो झुंड में रहता है, जो मुर्गी चुपचाप शांत रहेगा, अलग से बैठा हुआ रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चे बीमार है। अगर हम गिल्ला नहीं रखेंगे उनके जगह को तो मुर्गी बीमार होगी नहीं। छोटे बच्चे को हम स्टार्टिंग में भूसी नहीं डालते, कार्टून में रख के पालते। कार्टून को बिछाना होता है, कार्टून में के पालना होता है। अगर हम भूसी डालेंगे तो छोटे बच्चे भूसी

0: अपना टांग हाथ पैर मारेंगे तो सांस लेंगे तो भूसी नाक में चला जाएगा, तो उनको अपना नाक साफ करने नहीं आता, तो इसीलिए हम उन्हें कार्टून में बिछा के रखते हैं, फिर कुछ थोड़े बड़े होने के बाद हम भूसी में डालते हैं बच्चे को।
1: अच्छा, कुछ मुर्गियां अंडे भी देते होंगे।
0: जी मुर्गी तो अभी अंडे दिए हैं ज्यादा,
1: तो आपको इससे भी थोड़ा फायदा हो जाता होगा।
0: हाँ, रानी मुर्गी अंडा जो है 15 रुपया करके बिक्री करा जाता है, और देसी मुर्गी अंडा 22 में बिक्री करते हैं
1: जी, और वनराज का
0: 15 रुपीज करके। देसी मुर्गी में एक अलग ही ज्यादा ताकत होता है, देसी वो अपना बाहर घूम के चरते है और अपना फिर आप उनमें उतना मेहनत नहीं है, वो अपना घूम के घर आ जाते, और ये मुर्गी जो है इनको थोड़ा अच्छे से देखभाल करना होता है। इनका ये अंडे में भी ताकत होता है लेकिन इनका रेट कम ही है।
1: गीता देवी जी, अगर मुर्गी के बच्चे बीमार पड़ जाए तो उसे बचाने के लिए आप क्या उपाय करते हो?
0: वैक्सीन देते हैं, जब हम बच्चे लेके आते हैं तो हमें एक वैक्सीन डाल कर ही देते हैं वहाँ से।
1: अच्छा।
0: जिसका नाम MD होता है। फिर जब हम घर लेके आने के बाद 7 डेज में हम एक वैक्सीन डालते हैं F1 का, तो हम जब वैक्सीन बराबर कंटिन्यू अगर हम देंगे तो मुर्गी बच्चे बीमार हो गए ही नहीं, एक भी मुर्गी बीमार नहीं होगी
1: अगर बराबर से उनकी देख रेख किया जाए तो।
0: बिल्कुल नहीं हो, और मुर्गी का जगह गिल्ला नहीं रहना,
1: सूखा
0: रहना, लाइट में पाऊ जी। छोटे बच्चों को जब हम लेके आएंगे तो उनको जैसे देसी मुर्गी को माँ का गर्मी मिलता है बच्चे को, तो इनको माँ का गर्मी नहीं मिलता है, बच्चे हम 1 दिन के बच्चे लेकर आते हैं तो इनका माँ का गर्मी के लिए लाइट काम कर, तो इनको थोड़ा बड़ा होने तक दिन और रात दोनों टाइम लाइट जरूरत, थोड़े बड़े हो जाएंगे हमें सुबह में देने की जरूरत नहीं, रात में देने से बस।
1: कितने बच्चे निकलते हैं अंडे से?
0: तो मुर्गी लोग अपना ऊपर निकालते हैं, जैसा गर्मी होता है तो हिसाब से बच्चे निकालते हैं।
1: आप जितने अंडे रखते
0: हैं ना, रखा अभी हम लोग 15 रखेंगे तो 13 मिलेगा, 12 मिलेगा।
1: वैसे आप मुर्गी के बच्चे कहाँ से लाती हो?
0: हम लोग डॉलीगंज फार्मिंग वहाँ से लेके आते हैं।
1: अचानक से मान लीजिए कि आपसे 2-4 मुर्गियों की डेथ हो जाती, तो उस समय आप क्या करती हो?
0: फिर तो उसको उठा के हम लोग तो गाड़ देते हैं, कुछ हो जाता है यहाँ वहाँ फेंकते नहीं, अगर फेंकने से दूसरे मुर्गी को बीमारी आ जाएगा, अभी किस वजह से मरा है वो तो हमें पता नहीं होता, तो उस बच्चे को हम गाड़ देते हैं, फेंकते नहीं है, और फिर अगर दूसरा जो मुर्गी है अगर बीमार से 2-3 मरा हुआ है तो दूसरे को बीमारी नहीं आना बोल के हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भूसी डाले हुए हैं वो सब हम लोग चेंज कर देते हैं
1: ताकि दूसरा
0: मुर्गी को बीमारी
1: ना आए। जैसे अभी आपके घर में और कौन कौन रहते हैं?
0: मेरे घर में कोई नहीं है, मैं हूँ और हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे
1: जी। और अभी जैसे कि आपने कहा कि आप मुर्गी पालन कर रही हो, तो इसमें आपका टोटली 1 महीने में आपका कितना फायदा आ जाता
0: है? जब मुर्गी बच्चा लेके आते थे उनको दाना का हिसाब और मुर्गी बच्चा का हिसाब सब पैसा निकाल कर मिल जाते हैं हमें, 10-20 हजार मिल जाते हैं एक्स्ट्रा
1: जी। 10-20 हजार तक का कमा लेती हो इस मुर्गी पालन से? जी बिल्कुल,
0: इससे हमारे घर में भी थोड़ा सहायता होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, और बच्चे की पढ़ाई और घर के खर्च ये सारे जो है आप मुर्गी पालन से निकाल लेते हो, है ना? गीता देवी जी, आप RSM से जो दाना लेकर आती है उसे आप कितनी मात्राएं में देती है?
0: RSM से हम दाना लेके आते हैं छोटे बच्चे को, 1 दिन में एक बच्चा को 10 ग्राम दाना लगता है, तो बच्चे ज्यादा रहते हैं तो एक एक बच्चे को गिनती करके नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम एक ही बार डब्बा में डाल के दे देते हैं, डब्बा होता है पानी का डब्बा होता है।
1: और पानी की सुविधा कैसे रखते हो?
0: पानी का भी डब्बा होता है, पानी का भी डब्बा होता है उसके रख देने से। एकदम छोटे बच्चे की बात करें तो जब छोटे बच्चे को लाते हैं तब डब्बा भी नहीं खाते, वो लोग को प्लेट में दिया जाता है, पानी भी उसी तरह प्लेट में दिया जाता है, और एक बड़े प्लेट के अंदर में छोटा प्लेट रखकर पानी दिया जाता है ताकि मुर्गी बच्चा पानी से भीगे ना और पानी में डूबे ना, डूबेंगे तो मर जाएंगे, तो वैसा देने से वो सिर्फ पानी पी के हट जाएंगे, तो कुछ होगा नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा गीता देवी आपने। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है जो महिलाएं घर पर है, घर पर बैठी है, कुछ करना चाहती है बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं भी घर में ऐसे ही बैठी थी बहुत साल से, 10-15 साल से मैं भी हाउस वाइफ ऐसी बैठी थी
1: जी।
0: घर में खर्च बढ़ते जा रहे, फिर मैं मुझे भी कुछ करना था, तो तब मैं SHG ग्रुप से जुड़ी, फिर वहाँ में ट्रेनिंग ग्रुप के बारे में बताए, तब मैं ट्रेनिंग करने गई, वहाँ मुर्गी पालन का ट्रेनिंग गई, तो मुझे इच्छा जागी कि मुर्गी पालने का, गॉटरी का ट्रेनिंग होता है SHG ग्रुप में, NRL में मुर्गी का ट्रेनिंग होता है, और हम लोग का फूड का ट्रेनिंग होता है, तो जो घर बैठी महिलाएं हैं ऐसे ग्रुप में ज्वाइंट होकर आप इस चीज का लाभ उठाइए, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकर आप अपना काम शुरू कर सकती है, और घर बैठे ही हम जैसे वो अपने हाँ

0: का काम कर सकती है। मैं भी वही सोचकर ये काम मैं शुरू करी हूँ। तो
1: आज जो है आप
0: आज
1: एक अच्छे मुकाम पर
0: अब
1: पहुंच गई हो।
0: जी अब मुझे मुर्गी पालने का इच्छा हुआ, मैं मुर्गी पालती हूँ। जिसे जो इच्छा है वो अपने घर बैठे अपना काम
1: हाथ
0: कर
1: खर्चा
0: सकते,
1: निकाल सकते
0: हाथ
1: हैं।
0: खर्चा निकाल सकती है, हस्बैंड से हर टाइम पैसा नहीं मांग सकती। अपने टांग में खड़ा होने के लिए
1: हमें
0: अपना को
1: कोशिश करना
0: कोशिश करना चाहिए,
1: चाहिए, हमेशा
0: अपना
1: जो है
0: अपना कोशिश करिए
1: कोशिश पे जारी रहना
0: जी।
1: चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गीता जी आपने। आप हमारे साथ बनी हैं यहाँ पे, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आप मुर्गी पालन से संबंधित बहुत अच्छी बातें आपने लोगों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप मुर्गी पालन छोटा कारोबार बड़ी उम्मीदें के संदर्भ में श्रीमती गीता देवी जी से की गई यह खास बातचीत सुन रहे थे। किसान साथियों, जानकारियों का सफर तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस बीच थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। क्यों ना साथियों, अब एक खूबसूरत सा गीत सुना जाए। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। उम्मीद है इस गीत ने आपके मन को तरोताजा कर दिया होगा। किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं एक जानकारी।
1: किसान साथियों, अजोला जल से मुक्त रूप से तैरने वाला एक जलीय फर्न एवं सुंदर बारीक पत्तियों वाला पौधा है। अजोला तालाबों, पानी के गड्ढों और नम गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे लगभग 25 से 50 प्रतिशत प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह जल की उपलब्धता के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और जल के बिना पनप नहीं सकता। इसके प्रजनन और विकास के लिए सर्वोत्तम तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता 95 से 90 प्रतिशत अच्छी मानी जाती है। इसका सर्वोत्तम पीएच मान 5 से 7 है। अजोला जल से ही आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि अजोला का उत्पादन कैसे किया जाता है। उपजाऊ मिश्रित मिट्टी के साथ गोबर और पानी को समान रूप से मिलाकर तालाब में समान रूप से फैलाने की जरूरत होती है। 6x4 फीट आकार के एक तालाब के लिए यह आवश्यक है। यह समान रूप से समूचे तालाब में दिया जाना चाहिए। तालाब में पानी की गहराई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। तालाब की सतह भी समतल होनी चाहिए, जिससे पूरे तालाब क्षेत्र में पानी की गहराई समान रहे। मॉनसून के मौसम के दौरान बारिश के पानी का संचयन छत आदि से किया जा सकता है। अजोला की खेती के लिए यह संचित जल का इस्तेमाल किया जाए तो यह एक उत्कृष्ट और तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा। चलिए अब हम आपको बता दें कि अजोला से पशुओं को होने वाले लाभ क्या है। अजोला सस्ता, सुपाच्य एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं के दूध में अधिक पाई जाती है। पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। पशुओं के पेशाब में खून की समस्या फास्फोरस की कमी से होती है। पशुओं को अजोला खिलाने से यह कमी दूर हो जाती है। अजोला से पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे पशुओं का शारीरिक विकास होता है। अजोला में प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन तथा बीटा कैरोटीन एवं खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें शुष्क मात्रा के आधार पर 40 से 60% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज एवं 7 से 10% अमीनो अम्ल जैसे सक्रिय पदार्थ एवं पॉलीमर्स आदि पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः इसकी संरचना इसे अत्यंत पौष्टिक एवं असरकारक आदर्श पशु आहार बनाती है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि के लिए एक आदर्श चारा सिद्ध हो रहा है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित होता है कि जब पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ

0: 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके साथ ही इसे खाने वाली गाय भैंसों की दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। यह मुर्गी पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए भी बेहद लाभकारी चारा सिद्ध हो रहा है। यही नहीं, अजोला को भेड़ बकरियों, सुअरों एवं खरगोश बतखों के आहार के रूप में भी बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अभी आप जानकारी सुन रहे थे। किसान साथियों, आइए अब हम आपको मौसम पर आधारित कृषि परामर्श बता दें। साथियों, अगले 5 दिनों के दौरान ये बताया जाता है कि लगातार बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। किसान भाइयों को इस मौसम में अपनी फसल और कृषि जो कार्य करते हैं उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। किसान साथियों, बताया जाता है कि अगले दिनों भारी गरज के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हवाएं 13 मील प्रति घंटे के रफ्तार से चल सकती है। तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश की आशंका बताई गई है। तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है। किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी सलाह। साथियों, जल निकासी का उचित प्रबंध करें। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना 55% से 75% तक है, इसलिए खेतों में विशेषकर सब्जी वाली फसलों और नर्सरी में पानी जमा न होने दें। जल निकासी के लिए नालियां साफ रखें। धान और अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक या कीटनाशक का छिड़काव न करें, क्योंकि बारिश के कारण वो बह जाएगा। यदि धान की नर्सरी या फसल इस समय कटाई के चरण में आ रही है तो उसे टाली या कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें। पशुपालन करने वाले किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि अपने पशुओं की देखभाल करें। बिजली चमकने और आंधी तूफान के समय अपने मवेशियों, गाय भैंसों और बकरियों को खुले मैदान या पेड़ों के नीचे ना बांधें। उन्हें पक्के और सुरक्षित छप्पर के नीचे रखें। पशुशाला में नमी बढ़ने से बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए वहां साफ सफाई और चूने का छिड़काव करें। किसान साथियों, ये था मौसम पर आधारित कृषि परामर्श जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। चलिए लौटते हैं हमारे आज के उस सवाल पर जो हमने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में ही आपसे पूछा था। और हमारा प्रश्न था कि बीजू नारियलों के लिए किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए। तो साथियों, बिना देर किए आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, बीजू नारियलों का चुनाव ऐसे पौधों से करना चाहिए जो 60 साल से कम उम्र के हो, कम से कम 80 नारियल प्रतिवर्ष पैदावार देता हो, पौधा स्वस्थ हो और पौधे में कम से 30 खुली पत्तियां जरूर हो। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, इस प्रश्नोत्तर के माध्यम आपको सही जानकारी मिल गई होगी। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, घड़ी की सुइयां कह रही है कि अब इस सफर को यहीं रोकना होगा। चलते चलते आप सभी के लिए बस यही दुआ है कि आप और आपका परिवार हमेशा तंदुरुस्त और खुशहाल रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों और एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन

0: लेकर आए।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
0: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।
4: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सेवा सप्ताह। इसके तहत आज का विषय है भारत की सौर क्रांति।
5: सेवा संकल्प अभियान की 25 वर्ष की विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इसके माध्यम से हम भारत के विकास और बदलाव के उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा को प्रभावित किया है। आज का हमारा विषय है भारत की सौर क्रांति। तो प्रस्तुत है इस विषय में एक रिपोर्ट। भारत ने पिछले 25 वर्षों में विकास की अनेक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस विकास यात्रा में ऊर्जा का क्षेत्र भी लगातार बदल रहा है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भारत के लिए सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर सामने आई है। भारत में सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसी प्राकृतिक संसाधन को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की यही यात्रा आज सौर क्रांति के रूप में देखी जा रही है। सौर ऊर्जा कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में सदियों से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जीवन के विभिन्न कार्यों में होता आया है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने की संभावनाओं को बहुत व्यापक बना दिया है। सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य की किरणों से बिजली पैदा की जा सकती है और इस बिजली का इस्तेमाल घरों, खेतों, उद्योगों और सार्वजनिक संस्थानों में किया जा सकता है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा आज भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। भारत जैसे विशाल देश के लिए सौर ऊर्जा का महत्व कई स्तरों पर है। देश की आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना लंबे समय के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा समाप्त होने वाली प्राकृतिक संपदा नहीं है और इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसलिए ऊर्जा के भविष्य को सुरक्षित बनाने में सौर ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण के क्षेत्र में दिखाई देता है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके विपरीत सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के दौरान प्रत्यक्ष रूप से धुआं या वायु प्रदूषण पैदा नहीं होता। स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है। इसलिए भारत की ऊर्जा नीति में नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार अधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बड़े

स्तर पर सोलर पार्क और सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित हुई है। देश के अन्य हिस्सों में भी सौर परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका उद्देश्य केवल बड़े बिजली संयंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि सौर ऊर्जा को आम नागरिक के जीवन से जोड़ना भी है। इसी दिशा में रूफटॉप सोलर यानी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अब कोई परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि बिजली का उत्पादक भी बन सकता है। घर की छत पर लगाए गए सोलर पैनल से परिवार अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर सकता है। इससे बिजली के खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने की व्यवस्था भी कई स्थानों पर उपलब्ध है। ग्रामीण भारत के लिए भी सौर ऊर्जा नई संभावनाएं लेकर आई है। दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली की पारंपरिक व्यवस्था

0: सौर ऊर्जा को आम नागरिक के जीवन से जोड़ना भी है। इसी दिशा में रूफटॉप सोलर यानी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अब कोई परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि बिजली का उत्पादक भी बन सकता है। घर की छत पर लगाए गए सोलर पैनल से परिवार अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर सकता है। इससे बिजली के खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने की व्यवस्था भी कई स्थानों पर उपलब्ध है। ग्रामीण भारत के लिए भी सौर ऊर्जा नई संभावनाएं लेकर आई है। दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली की पारंपरिक व्यवस्था पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है, वहां सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियां उपयोगी साबित हो सकती है। सोलार लाइट, सोलार पंप और अन्य उपकरण ग्रामीण जीवन को आसान बनाने में मदद कर रहे हैं। किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे खेती के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ सकती है और पारंपरिक बिजली व्यवस्था पर निर्भरता कम हो सकती है। सौर ऊर्जा का विस्तार रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। सोलार पैनल के निर्माण से लेकर उनकी स्थापना, संचालन और रखरखाव तक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे में युवाओं के लिए सौर तकनीक से जुड़े नए कौशल विकसित करने और रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ रही है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा केवल बिजली का स्रोत नहीं बल्कि एक बड़े रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत की सौर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की है। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों को सौर ऊर्जा के उपयोग और विकास के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। इसे भारत की पहचान स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक सक्रिय भागीदार के रूप में भी मजबूत हुई है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी पहल का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना है। इस तरह की योजनाएं सौर ऊर्जा को बड़े उद्योगों और बिजली परियोजनाओं से निकालकर सीधे परिवारों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। जब बड़ी संख्या में घर अपनी जरूरत की कुछ बिजली स्वयं पैदा करने लगेंगे तो ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था भी अधिक विकेंद्रीकृत हो सकती है।
1: नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सोलर की जो योजना है, इससे मतलब लोगों को किस तरीके की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है?
2: नमस्कार सर, ये स्कीम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है
1: जी।
2: इसमें अंडमान निकोबार में दो तरह का सब्सिडी होता है, एक मिनिस्ट्री सब्सिडी और एक यूटी सब्सिडी। मिनिस्ट्री सब्सिडी 85,800 तीन किलोवाट पे 85,800 देते हैं और अंडमान निकोबार यूटी सब्सिडी जो है 1,17,000 दे रहे हैं। दोनों मिलकर जो है 2,02,800 मिल रहा है सब्सिडी। इसमें 3 किलोवाट में 300 यूनिट तक बेनिफिट मिलता है, आपको मुफ्त मिलता है। मान लीजिए आपके घर में 300 यूनिट जनरेट हो रहा है, इसमें भी 300 यूनिट लगभग आपका बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। फ्री बोले तो मिनिमम चार्ज 70 रुपए 50 रुपए 70 रुपए आएगा। जो 300 यूनिट की कॉस्ट करीबन 3,000 रुपए का आता है, वो लगभग 70 रुपए 100 रुपए का मेरा आता है।
1: तो क्या सोलर लगाने के बाद बिजली की उपलब्धता विश्वसनीयता में सुधार आया है? मतलब अभी
2: जी हम बहुत सुधार आया है सर, बहुत लोगों का घर में बिजली का बिल बहुत ही एकदम सामान्य मतलब कम हो गया,
1: पहले की तुलना में बिजली का बिल कम आ रहा है।
2: जी जी, हम जिसका 2,500-3,000 आ रहा था, अभी 100 रुपए 200 रुपए आने लग गया।
1: तो क्या आप ये सोलर की जो योजना है इसका और लोगों को लगाने का संदेश देंगे?
2: जरूर सर। सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2,00,000 रुपए लोन भी दे रही है और हम ऐसे भी जो है सब्सिडी काट कर बैलेंस अमाउंट लेकर भी हम काम कर रहे हैं, मतलब ना के बराबर पैसा लगता है, बहुत ही कम पैसा।
1: मतलब इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है?
2: इस योजना का लाभ लेने की

0: जिसके नाम से इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का जो बिल है वो होना चाहिए, और आधार कार्ड और बैंक का खाता बुक और एक ईमेल आईडी भी। मीटर जिसके नाम से उन्हीं का आधार कार्ड, उनका ही बैंक का जो सब्सिडी उस अकाउंट पे आएगा।
1: सरकार की ये जो पहल चल रही है इतने टाइम से, जब से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत बड़ा अच्छा स्कीम है सर। ये जो है 31 मार्च 2027 तक की गई इसका स्कीम, जो भी इससे लाभ उठाने जाते हैं जल्दी से जल्दी उठा सकते हैं।
1: अच्छा, बिल में भी रिडक्शन हुआ है जब से स्कीम आई?
0: जी हाँ, बहुत लोगों का हुआ है।
1: तो इसकी प्रक्रिया क्या क्या रहती है? जैसे किसी ने सोलर लगवा लिया, उसके बाद बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को यूनिट में से डिडक्शन होता है, या वो
0: जी हाँ,
1: सीधा? जी, थोड़ा सा
0: जैसा कि आपने यूज कर रहे हैं 300 यूनिट, और यहाँ का बिजली जो सोलर से जनरेट हुआ 300, इक्वल जीरो मतलब लगभग जीरो हो गया, तो आप 100 यूनिट मतलब 100 रुपये के अंदर मिनिमम चार्ज आएगा। मान लीजिए सोलर से जनरेट हुआ 300 और आपने यूसेज किया 200, यानी 200 यूनिट बैलेंस रहेगा। ये 100 यूनिट को जो नेक्स्ट मंथ या उसके बाद वाले मंथ में आपने ज्यादा यूज कर लिया, उस समय इस पर आगे का जो है रिडक्शन होगा।
1: अच्छा, आपने कई लोगों के घरों में सोलर योजना से इसका लाभ मिला है, तो वो लोगों की क्या राय है?
0: लोगों का राय बहुत अच्छा है, तो हाँ
1: उनको बेनिफिट मिला है? ठीक
0: जो बहुत बेनिफिट मिला है।
1: है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए।
2: हालांकि भारत की सौर क्रांति के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, इसलिए रात के समय या बादल वाले मौसम में ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बैटरी और ऊर्जा भंडारण तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सोलार पैनलों के निर्माण, उनके रखरखाव, भूमि की उपलब्धता और पुराने पैनलों के उचित निपटान जैसे विषयों पर भी लगातार काम करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत व्यापक है। तकनीक के विकास के साथ सोलार पैनल अधिक प्रभावी और उपयोगी होते जा रहे हैं। ऊर्जा भंडारण की तकनीक भी लगातार बेहतर हो रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा को बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के साथ जोड़कर एक व्यापक स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था विकसित की जा सकती है। भारत की सौर क्रांति केवल बिजली पैदा करने की कहानी नहीं है, यह ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ी एक व्यापक यात्रा है। सूर्य की रोशनी भारत के लिए प्रकृति का एक विशाल और निरंतर उपलब्ध संसाधन है। इस संसाधन को आधुनिक तकनीक के माध्यम से ऊर्जा में बदलना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज जरूरत इस बात की है कि सौर ऊर्जा को केवल सरकारी योजनाओं या बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे आम नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। घरों, स्कूलों, कार्यालयों, खेतों और छोटे व्यवसायों में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ऊर्जा की बचत और ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। भारत की सौर यात्रा अभी जारी है। आने वाले वर्षों में यह यात्रा देश की ऊर्जा व्यवस्था को और अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूर्य की अनंत ऊर्जा को विकास की शक्ति में बदलने की यह कोशिश ही भारत की सौर क्रांति का सार है, कि एक ऐसी क्रांति जिसका उद्देश्य केवल आज की ऊर्जा जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य तैयार करना है।
3: अभी आप सेवा सप्ताह कार्यक्रम सुन रहे थे।

श्रोताओं, अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीद

0: उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है संध्या के 6:45। अब सुनिए मृणाल पांडे की लिखी झलकी खेल।
1: धीरे धीरे बोलो, अम्मा जग जाएगी तो डांट पिटेगी।
2: धीरे तो बोल रहा हूँ, तुम सुनती नहीं हो।
1: फिर जोर से। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे?
2: घर घर खेलेगी।
1: खेलूंगी, चल प्रताप को भी बुला लाए।
2: प्रताप कहो, प्रताप थोड़े ही है उसका नाम।
1: असली तो प्रताप है, प्रताप तो गलत है।
2: पर उसकी माँ तो उसे बुलाती है प्रताप।
1: उसकी माँ तो नौकर है, नौकर लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्रताप प्रदीप, नौकरों को कुछ नहीं आता।
2: अच्छा छवि, नौकर लोग गंदे होते हैं ना?
1: हाँ बहुत, कितनी बास आती है उनसे ना,
2: एक छींची वाली। पर प्रताप तो गंदा नहीं है ना?
1: है तो, पर वो अपना दोस्त भी तो है ना।
2: दोस्त लोग गंदे नहीं होते?
1: नहीं, और फिर अगर उसे नहीं बुलाएंगे तो घर घर खेलते समय नौकर कौन बनेगा?
2: मैं बुलाऊं? एकदम धीमे से जाऊंगा, अम्मा को पता भी नहीं चलेगा।
1: नहीं, तू हल्ला मचा देता है। पिछली बार गमला गिराया था तो डांट पिटी थी कि नहीं?
2: अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों जाते हैं धीरे से। अरे प्रताप तो यहाँ बैठा है आंगन के पास।
3: ओए प्रताप, इधर आ।
1: बबलू, तू डांट पिटवाएगा हम सबको। ओ प्रताप, घर घर खेलेगा? देख हमारे कमरे का पंखा भी चला हुआ है।
4: और बीबी जी?
1: अम्मा सो रही है अभी, आ जाना।
2: चलो क्या क्या निकाल रहे छवि?
1: ऐसा करते हैं कि यह पलंग पोश इन दोनों कुर्सियों पर बांध देते हैं, छत बन जाएगी अपनी। ए प्रताप, बांध तो जाना। बबलू तू इधर से पकड़ ले। ठीक, बस ठीक है। अब बबलू तू बन जा पापा और मैं अम्मा।
4: और बीबी जी मैं?
1: तू नौकर हुआ ना।
4: बीबी जी मैं हर बार नौकर नहीं बनूंगा, कल भी बबलू भैया साहब बना था, उससे पहले भी।
2: छवि इस बार प्रताप को पोस्टमैन बना ले।
1: पोस्टमैन तो एक ही बार आता है, बाकी टाइम ही क्या करेगा खड़ा खड़ा।
2: अच्छा तो फिर माली,
1: माली बनेगा प्रताप?
4: नहीं, मैं तो कोई बड़ा आदमी बनूंगा, माली भी तो नौकर होता है।
2: पर तेरे कपड़े तो फटे हैं, तू कैसे बनेगा?
1: अच्छा बबलू छोड़ भी, चल तू डॉक्टर बन जाना प्रताप।
4: ठीक है।
2: पर छवि डॉक्टर तो मैं बनूंगा, पर तू तो पापा है ना।
1: नहीं मुझे नहीं बनना पापा वापा, बस घर आकर सोफे पर बैठना भर होता है, बाकी सब काम तो तुम करती हो, तुम हमेशा अच्छी चीज खुद ले लेती हो।
2: आहा, जैसे तुम कुछ मजे करते ही नहीं, जेब से रुपए निकाल निकाल कर कौन ले जाता है, मोटर में आगे आगे ऑफिस कौन जाता है?
1: तो ऑफिस जाकर कोई मजे थोड़े ना होते हैं, दरवाजे के पीछे बैठे रहना तो होता है बस, जब तक तुम बुलाती नहीं। और तुम कितने मजे से खाना भी पकाती हो, घर भी बनाती हो, अम्मा की धोती भी लपेट लेती हो मजे से।
2: तो तुम भी लपेट लो ना, मना कौन करता है।
1: हाँ जी, मेरे को लड़की हूँ क्या? चले आ प्रताप, अपन कंचे खेलें, ये लड़कियां तो बस सबका मजा बिगाड़ देती हैं।
2: जरा ले जाकर तो देखो प्रताप को, मैं अभी जाके मम्मी से कह दूंगी कि बबलू प्रताप के साथ बाहर धूप में कंचे खेल रहा है। क्या खूब कहूंगी। और प्रताप तू इसके साथ गया तो मैं तेरी भी शिकायत कर दूंगी।
4: बीबी जी मैंने खेलने को मना नहीं किया ना, मैं तो डॉक्टर बनूंगा।
2: डॉक्टर बनूंगा, बड़े आए हैं मुंह देखा है अपना, डॉक्टर बनने के लिए

0: पता है पहले इंग्लिश सीखनी होती है, तुझे आती है? बोल आती है अंग्रेजी तुझे? बता कप की स्पेलिंग क्या होती है?
1: मैं बताऊं छवि, मुझे आती है सी यू।
0: तू चुप कर, बता आती है तुझे प्रताप?
2: तो क्या हुआ, मुझे छह तक के पहाड़े तो आते हैं। मास्टर जी ने शाबाश कहा था मुझसे, मैं भी तो स्कूल जाता हूँ।
0: पहाड़े से क्या होता है, इंग्लिश आनी चाहिए। हम लोग तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं, तेरा स्कूल तो फटीचर है हिंदी वाला। पहले अंग्रेजी सीखते हैं फिर बनते हैं डॉक्टर, जैसे
1: जैसे अपने जयंत मामा।
0: मालूम है हमारे जयंत मामा सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वह इंग्लैंड गए थे पूरे 10 साल के लिए। इंग्लैंड मालूम है विलायत।
1: और क्या मालूम प्रताप, छवि के लिए और मेरे लिए वहाँ से एक एक खिलौना भी लाए थे।
0: पर अम्मा देती कहाँ है?
1: हाँ मालूम प्रताप, अम्मा ने उन्हें अपनी अलमारी में ऊपर बंद कर दिया है, कहती है महंगे खिलौने हैं टूट जाएंगे, देसी नहीं। इम इम
2: ये इम इम क्या?
0: इम्पोर्टेड।
1: हाँ इम्पोर्टेड है, यहाँ तो मिलेंगे भी नहीं, बहुत महंगे है।
2: अच्छा
0: और क्या, बहुत सी चीजें लाए थे जयंत मामा, अम्मा के लिए, पापा के लिए, सब के लिए।
1: पर पापा तो कहते हैं उनकी कमीज बड़ी घटिया है ना छवि?
0: पापा तो वैसे ही कहते हैं लड़ाई करने को, अम्मा रोती है ना फिर।
1: पापा गंदी बातें कहते हैं।
2: मेरा बाप भी कहता है जब दारू पी के आता है ना, बहुत गंदी बातें करता है, मारता भी है हम लोगों को।
1: तेरा बाप गंदा है रे?
2: बहुत गंदा है साला।
1: तुझे अपना बाप अच्छा लगता है रे?
2: नहीं भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, खूब बड़ा, तो मालूम है क्या करूंगा?
1: क्या
2: बताऊं? तुम लोग कह दोगे सबसे। नहीं बताता, तुम बड़े लोगों का क्या भरोसा?
0: बता ना, हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, क्यों बबलू?
1: नहीं एकदम नहीं, बता ना यार, देख फिर चॉकलेट भी देंगे तुझे।
2: मैं घर से भाग जाऊंगा।
1: सच्ची?
2: सच्ची।
1: पर कहाँ जाएगा?
2: बस भाग जाऊंगा कहीं भी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता।
0: दिल्ली में तो हमारे जयंत मामा भी रहते हैं, ये बड़ी गाड़ी है उनकी।
2: तो ठीक है, मैं उनका ड्राइवर बन जाऊंगा।
1: फिर जब हम दिल्ली में आएंगे तो हमें गाड़ी में दिल्ली घुमाएगा ना? डिर,
0: डिर। अरे बबलू हल्ला नहीं, अम्मा जग जाएगी, धीरे धीरे बोल।
1: जग जाएगी? सोई थोड़े ना है।
0: तो क्या कर रही है?
1: आंख पर हाथ रखकर रो रही होगी लेटे लेटे।
0: दत्त?
1: दत्त क्या, रोती नहीं है जल्दी से? उसे जगह एकदम अच्छी नहीं लगती।
0: आहा, तुझे कैसे पता?
1: पता कैसे नहीं, रात को पापा से कह रही थी।
0: अम्मा यहाँ आकर हंसती भी नहीं, बस खाली पीली डांटती है हरदम।
1: मैं बताऊं छवि, घर घर में अम्मा को नहीं रखते इस बार, तू पापा बन जा, मैं जयंत मामा और प्रताप।
0: प्रताप ड्राइवर? क्यों प्रताप?
2: ठीक है बेबी जी।
1: पर छवि बिन अम्मा के घर घर कैसे खेलेंगे?
0: सोच लो कि अम्मा मर गई। छी छी क्या, सच्ची मुच्ची थोड़े ही मरेगी जैसे दादी मरी थी, ऐसे ही झुट्टी मुट्टी।
1: अच्छा ठीक है, चल चल प्रताप तू उधर खड़ा हो जा।
3: हेलो जीजा जी।
0: कहिए जनाब, कब आए?
1: आज सुबह ही तो। पर छवि पापा तो खुद स्टेशन गए थे मामा को लाने।
0: अच्छा अच्छा, हम दिल्ली में खेल रहे हैं ऐसा समझ बस।
1: क्या पीजिएगा जीजा जी?
0: सिगरेट।
1: हट पागल, पीने वाली चीज माने चाय वाय मांगो।
0: हम तो सिगरेट पियेंगे।
1: अच्छा अबे प्रताप।
2: हाँ भैया जी।
1: अबे भैया जी नहीं, सुलूट करके बोलो यस सर। तुम ड्राइवर हो ना?
2: यस सर।
1: जाओ एक पैकेट सिगरेट।
2: अच्छा
1: और सुनाइए जीजा जी, हाउ इज बिजनेस?
0: टायरिंग टायरिंग, बहुत काम है सुबह से शाम तक।
1: ले आया सिगरेट?
2: जी हाँ।
1: शाबाश, साहब को दे।
0: अरे बबलू फ्रिज में अपने हिस्से की चॉकलेट पड़ी है ना, चल खाते हैं, प्रताप को भी दे देंगे। अच्छा प्रताप
1: ये ले प्रताप,
0: अच्छी है?
2: बहुत बढ़िया, ये विलायती मिठाई जो है ना, इसकी पन्नी मेरे पास भी है।
1: जयंत मामा ने हमें चार चार दी थी ना, याद है छवि तुझे?
0: हाँ पर अम्मा ने बाकी वाली ऊपर रख दी थी कि एक साथ खाओगे तो बीमार हो जाओगे।
1: अम्मा बड़ा बोर करती हैं।
0: पापा भी
2: और मेरा बाप भी।
0: अरे प्रताप बबलू देख कितनी बढ़िया तितली।
2: पकड़ लाऊं बीबी जी?
1: बैठने दो बस, अब भी देखना।
0: अरे बबलू उसने सच्ची पकड़ ली, आह कितनी सुंदर है ना।
1: देख छवि हाथ पैर भी है इसके।
2: आंखें भी है भैया जी।
1: इसका एक पैर नोचे छवि, है नोचे।

0: देखो देखो बाकी पैर कैसे हिलने लगे।
1: एक और,
0: अरे इसका पंख तो फट गया, अब तो इसे कापी में भी नहीं चिपका सकते।
2: छोड़ दो बेबी जी, मर जाएगी।
0: तो क्या हुआ, तितली ही तो है ना।
1: अरे गधे छोड़ चूदी,
0: पकड़ पकड़ बेवकूफ कहीं का।
2: बेबी जी हमको गधा वधा मत कहो।
0: वरना क्या, हाँ क्या,
2: वरना मैं नहीं खेलूंगा, तितली भी नहीं पकड़ूंगा।
0: मत खेल, पहले तो हमारी चॉकलेट खा गया, फिर रोग जमाता है, इतनी बढ़िया हमारी तितली भी उड़ा दी, जा भाग।
2: जाता हूँ, अब मत बुलाना खेलने को।
0: बुलाएंगे, 100 बार बुलाएंगे, और तू 100 बार आएगा, नौकर है तू।
2: मैंने कहा ना मैं नौकर नहीं।
0: क्यों नहीं, आदमी का बच्चा आदमी और नौकर का बच्चा नौकर, लालची कहीं का। चल बबलू अपन दोनों खेले।
1: प्रताप तो सच में चला गया छवि।
0: जाने दे, वे लोग गंदे हैं, अपन उनसे नहीं खेलेंगे।
1: पर वह कंचे देता है छवि, इमली तोड़ता है, पतंग को छुटैया देता है, ये तो सब नौकर करते हैं। तुम गंदी हो, तुम सबको भगा देती हो।
0: आहा, तो वो लड़ता क्यों था हमसे?
1: तुमसे लड़ता था, मुझसे तो नहीं।
0: तो घर घर खेलने को तुम्ही ने तो बुलाया था उसे।
1: तुमने भी तो, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ घर घर।
0: क्यों, अभी तो इतना अच्छा घर बनाया है,
1: घर घर में बहुत झगड़ा होता है।
0: तो अम्मा पापा वाला घर घर नहीं खेलेंगे, जयंत मामा और पापा वाला खेलेंगे।
1: नहीं, उसमें भी होगा, कैसा ही घर घर खेलो झगड़ा तो होता ही है।
0: अच्छा तो चल स्कूल स्कूल खेले, बस उसमें तो नहीं होगा।
1: नहीं, उसमें भी तुम टीचर बनती हो, मुझे बच्चा बनाती हो और एक कोने में खड़ा कर देती हो।
0: पर तू कैसे बनेगा टीचर, तुझे स्पेलिंग भी तो ठीक से नहीं आते।
1: तुम्हें भी तो नहीं आते।
0: मैं तुमसे एक क्लास ऊपर हूँ, मुझे तो आते हैं, मैं तो काऊ पर 5 सेंटेंस भी लिख सकती हूँ।
1: हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, बस गलत सलत अंग्रेजी बोलती हो तुम, तुम्हें भी कोई सही अंग्रेजी थोड़ी आती है। अम्मा कहती थी।
0: क्या,
1: मैंने सब सुना था रात को, अम्मा पापा से कह रही थी कि यहाँ आकर बच्चों की अंग्रेजी खराब हो गई है, स्कूल भी खराब है, टीचर भी, नाम को अंग्रेजी स्कूल है, टीचर सब हिंदी बोलते हैं, सब छोटे लोगों के बच्चे भी जाते हैं वहाँ।
0: मुझे तो अपने टीचर अच्छे लगते हैं, यादव सर खूब चुटकुले सुनाते हैं, मालूम उन्हें गीदड़ और कुत्ते की बोली बोलना भी आता है। वहाँ तो मिस लोग बस अंग्रेजी बोलती थी और हंसती भी नहीं थी, और उन्हें चुटकुले भी नहीं आते थे।
1: मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है।
0: मुझे भी,
1: पर अम्मा को तो नहीं लगता,
0: जयंत मामा को भी नहीं। याद है कहते थे कैसी फटीचर जगह है।
1: कोई नहीं, जयंत मामा खुद फटीचर है।
0: हाँ हाँ, चल अब खेलना वेलना तुझे है नहीं, चल चीजें वापस रख दे, नहीं तो अम्मा उठेगी तो गुस्सा करेगी। उठा कुर्सी।
1: मैं नहीं रखता, तूने तो पलंग को शमशल धुआया था, अब तू रख वापस।
0: ठीक है, अब आना मेरे पास खेलने, घर घर 2 घूंसे दूंगी। तुम लड़के लोग होते ही ऐसे हो, पहले सब सामान इधर उधर करवा के घर घर बनाते हो, फिर संभालते वक्त खुद बाहर भाग जाते हो, सब हमारे सिर छोड़कर।
1: तुम ही तो बुलाती हो घर घर खेलने,
0: तुम ही तो आते हो, सब घर बर्बाद कर दिया मेरा।

फिटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी की श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद यानि 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसके तहत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में गायन हम आपको सुनवाएंगे।

कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स में जानकारी का विषय रहेगा गंध पाश और ट्राइकोडर्मा से कीट प्रबंधन।

कल सुबह 9 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल जगत, जिसमें आप सुनेंगे सपनों की उड़ान और सोशल मीडिया का उपयोग पर चर्चाएं। कल सुबह 10 बजे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। सैनिकों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स आप सुनेंगे कल दिन के 11 बजे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: दिन इस अंतराल के बाद।
1: मिथ्याहार विहाराणाम प्रसंगा दोष संचय दोषाणाम संचयात रोग प्रसज्यन्ते नर आमयान। अनुचित भोजन और अनियमित जीवन शैली के कारण हमारे शारीरिक दोष वात पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं और यही असंतुलन आगे चलकर कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। उचित भोजन और नियमित जीवन शैली से शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद का ज्ञान बनाए जीवन आसान। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को द्वीपों में मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट स्वच्छता दिवस के अवसर पर द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। द्वीप समूह के स्कूली विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया और श्री विजयपुरम में कल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित होगा।

0: सांधे समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट स्वच्छता दिवस 2026 के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा श्री विजयपुरम के कार्मास्कोप बीच पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं मध्य अंडमान के रंगत स्थित रमन बगीचा में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रभागीय वन अधिकारी मध्य अंडमान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से किया गया। इस दौरान करीब 57 किलोग्राम कचरा एकत्र कर अलग अलग करने के बाद आगे के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत नींबूताला को सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य समुद्र तटों की स्वच्छता, समुद्री एवं तटीय पर्यावरण के संरक्षण तथा समुद्री कचरे की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में 125 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार और संडेज ऑन साइकिल। आकाशवाणी

श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री विजयपुरम में आज राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक विज्ञान द्वारा आयोजित संगोष्ठी का विषय था इंडियन एनर्जी बास्केट 2047 संभावनाएं और चुनौतियां। कार्यक्रम में द्वीप समूह के तीनों जिलों के 6 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने विषय पर प्रस्तुतियां दी और प्रश्नोत्तर सत्र में हिस्सा लिया। दक्षिण अंडमान जिले के नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनीवे के सिद्धांत नाम्बियार को विजेता घोषित किया गया, जबकि मध्योत्तर अंडमान जिले के जीएसएस केलापुरम के अभिनव नायर उप विजेता रहे। विजेता सिद्धांत नाम्बियार अब 30 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान सेमिनार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। दक्षिण अंडमान के कन्यापुरम ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर KP1 में आज नवनिर्मित बस स्टॉप का उद्घाटन किया गया। 7,87,621 रुपये की लागत से निर्मित इस बस स्टॉप का उद्घाटन अंडमान निकोबार प्रशासन में ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निदेशक डॉ. अपूर्व शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉ. शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने और सुरक्षित तथा बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। नवनिर्मित बस स्टॉप में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और कामगारों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होगा। उद्घाटन के बाद एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। श्री विजयपुरम में कल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के श्री विजयपुरम स्थित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में साइकिलिंग, शारीरिक सक्रियता, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साइकिल रैली सुबह 7 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर फ्लैग पॉइंट तक जाएगी और वापस नेताजी स्टेडियम लौटेगी। संडेज ऑन साइकिल पहल की शुरुआत दिसंबर 2024 में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत की गई थी। आयोजकों के अनुसार यह पहल देश भर में फिटनेस और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के माध्यम बन रही है। पुदुचेरी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और CBSE पाठ्यक्रम के तहत विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर दिसंबर 2026 में श्री विजयपुरम स्थित अंडमान कॉलेज में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक पात्र पूर्व विद्यार्थियों का पंजीकरण 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी कार्यालय समय के दौरान अंडमान कॉलेज के परीक्षा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। चेन्नई से आ रहे जहाज MV स्वराजदीप के 21 सितंबर को सुबह 9 बजे तक श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। जहाज में कुल 571 यात्री सवार है। जहाज हेडोजट्टी पर लगेगा। यह जहाज 24 सितंबर को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान की लोडिंग 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। वहीं यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य जहाज रवानगी के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पी कनन के नेतृत्व में महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को द्वीप समूह के मुख्य सचिव का पदभार संभालने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधिमंडल ने जीवीपंत अस्पताल में पर्याप्त संख्या में जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की। विशेष रूप से अस्पताल के क्लिनिक

विभाग में पर्याप्त जूनियर डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को सुना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट स्वच्छता दिवस के अवसर पर द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। द्वीप समूह के स्कूली विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया और श्री विजयपुरम में कल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है संध्या के 7:15। अब सुनिए मौसम व जलयानों के यात्रा कार्यक्रम।

पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इससे समुद्र काफी अशांत रहेगा और मछुआरों को 22 सितंबर तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंबल बे कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए जाएगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही शाम 4:30

स्वराज द्वीप के लिए एमवी जॉली बॉय कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इसकी वापसी अगले दिन यानी सोमवार 21 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये थे जलयानों के यात्रा कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय है 7:20। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: चिकी चिकी झूम झूम, चिकी चिकी झूम झूम।
0: कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अंगरक्षक फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। समीर की रचना तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने।

संग्राम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज शनिवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों, यूं तो दुनिया रहस्यमयी चीजों से घिरी हुई है। कहीं समंदर अपने सीने में राज छुपाए बैठा है, तो कहीं आसमान अजीबोगरीब रंगों से हमें चौंका देता है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही कुछ अनोखे, हैरान कर देने वाले रहस्यों की दुनिया में। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक सूनी शांत जमीन पर खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, लेकिन फिर भी जमीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। पत्थर। हाँ, वही पत्थर जो आमतौर पर हिलते भी नहीं, यहाँ अपने आप चल चुके होते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने निशान। और यह अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है अमेरिका की डेथ वैली में मौजूद रेस ट्रैक प्लाया नाम की जगह पर। दोस्तों, अमेरिका के डेथ वैली में एक जगह है जहां पत्थर खुद ब खुद चलते हैं। जी हाँ, रेस ट्रैक प्लाया नाम की जगह पर भारी भरकम पत्थर रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी इंसान के धक्का दिए। कई सालों तक यह एक पहेली बना रहा। बाद में रिसर्च में पता चला कि पतली बर्फ की परत और तेज हवा मिलकर इन पत्थरों को धीरे धीरे खिसका देती है। लेकिन सोचिए, पहली बार जब किसी ने ये देखा होगा तो जरूर ये कहा होगा कि ये कैसे हुआ।

दोस्तों, क्या कभी आपने आसमान में ऐसा इंद्रधनुष देखा है जो पानी की बूंदों से नहीं बल्कि आग की लपटों जैसा चमकता हो? कल्पना कीजिए, नीले आसमान के बीच अचानक रंगों की एक जलती हुई पट्टी दिखाई दे, जैसे किसी ने बादलों पर रंगों की आग जला दी हो। जी हाँ, प्रकृति का यह अद्भुत नजारा कहलाता है सरकम हॉरिजॉन्टल आर्क, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं फायर रेनबो। दोस्तों, यह कोई साधारण इंद्रधनुष नहीं है। सामान्य इंद्रधनुष बारिश की बूंदों से बनता है, लेकिन फायर रेनबो बनता है ऊंचाई पर मौजूद पतले सिरस बादलों में छिपे छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टलों से। जब सूर्य आसमान में लगभग 58 डिग्री या उससे ज्यादा ऊंचाई पर होता है और उसकी किरणें इन बर्फ के क्रिस्टलों पर एक खास कोण से पड़ती हैं, तो रोशनी अपवर्तित होकर लाल, नारंगी, पीले और नीले रंगों की एक चमकदार पट्टी बना देती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंगों की आग जल रही हो।

दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी रात देखी है जहां अंधेरा भी चमकने लगे, जहां समंदर की हर लहर सितारों की तरह झिलमिलाने लगे? अगर नहीं, तो जरा चलिए मालदीव के उन तटों की ओर, जहां रात होते ही समुद्र किसी सपने जैसा दिखाई देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस अनोखी घटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। यह कोई कैमरे का कमाल नहीं और ना ही कोई फिल्मी इफेक्ट है, बल्कि 100% प्राकृतिक चमत्कार है। समंदर में पाए जाने वाले बहुत ही सूक्ष्म जीव, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, जब लहरों की हलचल से हिलते हैं या कोई उनके बीच से गुजरता है, तो वे नीली रोशनी छोड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि हर कदम, हर लहर, हर छींटा नीली रोशनी में नहाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों और समंदर में बस गए हों। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह रोशनी दरअसल इन जीवों की एक तरह की सुरक्षा प्रणाली होती है, लेकिन हमारे लिए यह एक ऐसा नजारा है जो जिंदगी भर याद रह जाता है।

दोस्तों, आग का रंग आपने हमेशा लाल या नारंगी ही देखा होगा। लेकिन सोचिए, अगर आग नीली हो जाए, अंधेरी रात में पहाड़ की ढलानों से नीली लपटें बहने लगें, तो वो नज़ारा डरावना होगा या खूबसूरत? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद कावह इजन नाम का ज्वालामुखी दुनिया में अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। यहाँ रात के समय ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जलने लगती है और उस आग का रंग नीला दिखाई देता है। असल में लावा लाल ही होता है, लेकिन सल्फर गैस की जलती हुई लपटें रात के अंधेरे में नीली आग जैसी दिखाई देती है। जब ये नीली लपटें काली चट्टानों के बीच बहती है तो ऐसा लगता है मानो धरती ने आसमान के सितारे उधार लेकर अपने सीने पर सजा लिए हों। यह नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि सल्फर गैस इंसानों के लिए हानिकारक होती है।

और इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए इंसानियत फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। इसे रचा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर।

आप सुन रहे हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में ये गीत, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। लता मंगेशकर और चित्रकर ने आवाजें दी है इस गीत को, और फिल्म का नाम है अलबेला।

शैलेंद्र के शब्दों को सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने मन्ना डे और लता मंगेशकर के आवाजों में। फिल्म का नाम है श्री 420।

0: श्रोताओं, गीतों का सिलसिला जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
3: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
0: अंतराल के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। एक बेचारा, अब सुनिए ये फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक कलाकार है मुकेश और लता मंगेशकर।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए ये अगला गीत, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और फिल्म का नाम है कन्यादान।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में सुनिए इंदिवर की रचना मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्रा।

मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को धुन तैयार किया है आरडी बर्मन ने मुकेश और लता मंगेशकर के आवाजों में, और फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी।

फिर कब मिलोगे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार और गौरव गान।

पहले रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी को 2,50,000 प्रति माह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर के पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रिज्यूमे 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रिज्यूमे चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूमे ad.pmb@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ एटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी या अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डिपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं

संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम यानी प्रॉपर चैनल से अवसर सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसे विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2024 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुए।

60 दिनों के भीतर उचित माध्यम यानी प्रॉपर चैनल से अवसर सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसे विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2024 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुए। अब सुनिए गौरव गान।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
2: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।

अभी आप रोजगार समाचार और गौरव गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की

0: लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। चार लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई।

0: जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
3: I think close to 8 cargo planes have arrived.
4: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
3: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
2: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्की 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर इमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या

लिए ये पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म युगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन।

0: लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा। चौहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: नानू दट्ट अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होना क्या
3: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया, माटी मिला
3: मालूम नहीं, वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो, सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
4: गरुड़न नोड़ रॉकी कन्फर्म आयतु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತ ನಾಗ್ ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೆ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತ ನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಾಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय। अब विशेष

0: शीर्ष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
1: हंस क्यों रहे?
2: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिसालदार के नगर पोते मीर रोशन अली पे हंस रहे।
1: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ
3: सुनिए मेरी बात, सुनिए।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बड़ा पुत्रा भाई।
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली,
4: बोल। सुन,
2: क्या
1: तेरी कुर्माई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर, और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा।
2: नहीं, बोलो।
1: बात यह है

0: मेले में चोर पॉकेट मार बहुत आते हैं।
1: सूत्र आते हैं फिर?
0: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
1: अगर मैं मार लूँ तो?
2: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: गजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली? अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया।
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
2: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974। कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
5: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
2: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंसराज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए
1: जान लीजिए
0: और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल

0: जबरदस्त फैन कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि
1: क्या
0: कभी
1: बात।
0: हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है।
1: जी
0: मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब।
1: क्या
0: या
1: बात।
0: सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे। बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो
1: जी
0: गाने क्लासिकल ढंग के गाने। तो तब दिनकर अम्मेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दीना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे
1: जी
0: गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट, के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब
1: चालू हो
0: लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब
1: वाह।
0: ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने,
1: जी
0: इशारों इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो
1: जी
0: वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है।
1: ओ
0: तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं।
1: जी
0: फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते हैं जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण,
1: हेमंत
0: राजा
1: साहब
0: मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे। तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे।
1: जी
0: दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को
1: जी
0: बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े वरना वहीं रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो,
1: जी
0: पलंग हो, इंसान

0: घर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक
1: हाँ
0: खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात
0: हूँ,
1: है।
0: मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है।
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही।
1: मन

0: स्मृति शेष स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कनें एक लय पकड़ लेती हैं और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, दुनिया में कितनी ही दूरियां

0: कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
1: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
0: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
0: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली।
3: スポーツマンシップの精神にのっとり、大会の規則を尊重、遵守し、栄光と名誉のために。

0: この競技大会に参加することを約束します。
1: रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
2: वतश्ताशि वा दाई निशुक काई आसिया क्योगी ताइकाई नो शिंपाई गिजुत्सु याकुइन वो दाइफोशी स्पोर्ट्समैनशिप नो सेइशिन नि नोत्तोरी ताइकाई नो किसोक वो सोंचो जुन्शु शि होसे ना जज्जी वो ओकोनाउ कोतो वो याकुसोकु शिमासु।
1: एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
3: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस, इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
1: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दे कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम।

0: होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिंटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि LA 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटालिटी, अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और 9:00 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव

0: छक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशू से लेकर एमएमए तक की। एक तरफ वुशू में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशू की। वुशू के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती, इन्हीं में वुशू भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशू के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशू की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशू अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 10:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीत।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं चोरी चोरी फिल्म के इस गीत के साथ। गाय कलाकार लता मंगेशकर और मन्ना डे, गीतकार शैलेंद्र व संगीतकार है शंकर जय किशन।

किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को रचा है मजरूह ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है मेरी जीवन साथी।

आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में ये अगला गीत है एनी मी इन पेरिस फिल्म से। इसे रचा है शैलेंद्र ने और तर्ज बनाए हैं शंकर जे किशन ने।

अभी आप सुन रहे हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में समीर की रचना। सुरों में पिरोया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम है बागी।

आप सुन रहे हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गुलजार की रचना, इसे गाया है चित्रा और साथियों ने। फिल्म का नाम है अशोका।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म का गीत। इसे लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर अधिकांश वर्षा हुई। जनसेवाओं और मछुआरों को बताया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 22 सितंबर तक समुद्र में न जाए। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 11:40 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 29वीं तिथि तदनुसार 20 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:28 और 35 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।